0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
1: मुझे दुकान जी बे डरंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।

तुर्किया जे परदेही वज़ीर हाकान फैदान चयो आहे त पाकिस्तान सऊदी अरब ऐं तुर्किया जे दिफ़ाई मुआहिदे जो हदफ़ ईरान न आहे। हीउ नेटो मुआहिदे जहिड़ो आहे। जेसि ताईं मेंबर मुल्क ते हमिलो न थींदो, ईरान समेत कंहिं बि मुल्क ख़िलाफ़ कार्रवाई न थींदी। नेटो मुआहिदे जी शिक 5 तहत मका मुआहिदे में हिक ॿिए जी दिफ़ा जी ज़मानत ॾिनी वई आहे। नेटो जीअं टई मुल्क हिकु वज़ारती कमेटी क़ाइमु कंदा, जंहिंजो सेक्रेटरेट सऊदी अरब में हूंदो। टेक्निकल मामला हल थियण बाद मिस्र बि दिफ़ाई मुआहिदे में शामिल थी सघे थो।

पाकिस्तान सऊदी अरब ए तुर्किया विच में मका मुआदो थियण की खुशी में पाकिस्तान में जश्न। इस्लामाबाद के टिन्ही मुल्क के झंडन से सिंगारे वो वजीर आजम फील्ड मार्शल समेत टिन्ही मुल्क के सरबराह जो तस्वीरों भी लगल। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी तारीखी मुआदे से सयू करण बाद देह पहुंची वो। पाकिस्तान सऊदी अरब ए तुर्किया के सरबराह तारीखी दिफाई मुआदे से सयू कई हुई। कानपुर शहर में मुबैना तौर जहरीलो खाधो खाने सबब टे बार फौत सत बेहोश। गुलजार कुरेशी के घर में मुबैना तौर जहरीलो खाधो खाने सबब दह भाती बेहोश थे। इलाज दौरान पंज वरन जैन कुरेशी ए टिन साल निगरी मुस्कान फौत थे। गुलजार समेत बया अस्पताल में इलाज हेठ।

अगवाणी वेझो घर मां फुर खिलाफ़ ॻोठाणनि जो इंडस हाईवे ते धरणो। ॻोठ सुबह सादिक खोसो में घर मां चोरी ख़िलाफ़ लाशारी बिरादरी जे माण्हुनि इंडस हाईवे बंदि करे छॾियो। ॻोठाणनि जो चवणु आहे त हथियारबंद घर में घिड़ी गर्भातियुनि खे जरगमाल करण बाद तशद कयो। मोटरसाइकिल ऐं ॿियो सामान बि फुरे विया आहिनि। फुर थियल सामान वापसि करायो वञे।

0: यमन जे सरकारी फौज हुस इंकलाब फौजी ऑपरेशन।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम महरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाए 0320180003।
3: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा। छो परेशान आई
4: अदा? नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
5: अदा? दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा?
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी।
5: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 0301-399-2836
6: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1558-724।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

0: अपनी स्टेचिंग मशीन के जरिए जे हमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आरई 03073592120।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर 03003385569।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

0: खूबसूरतीअ जो असल सिर्फ़ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ़ ॿिनि ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾींहुं कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाइ 0301-9196-851।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई
2: हाँ नहीं अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372
4: जहाँ उम्मीद के दिए जलते हैं
5: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 03000-27234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा
7: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
6: मुजे दुकान जी बेड हरंदी
7: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
2: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
7: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
8: 03013992836
2: आई मोहम्मद उमर गोरी 03151557724
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94।

हाई क्वालिटी पीसी 5 साल की वारंटी के साथ।

तुर्किया के परदेही वजीर हाकान फैदान है तो पाकिस्तान सऊदी अरब ए तुर्किया के दिफाई मुआहदे जो हदफ ईरान न है। ही नेटो मुआहदे जड़ो है जेस तीन मेंबर मुल्क से हमलो न ईरान समेत कें भी मुल्क खिलाफ कार्रवाई नी। नेटो मुआहदे की शिक पंज तहत मका मुआहदे में एक बे की दिफा की जमानत डिनी वही है। नेटो जहां टे मुल्क एक वजारती कमेटी कायम कंदा जो सेक्रेटरिएट सऊदी अरब में टेक्निकल मामला हल थियण बाद मिस्र भी दिफाई मुआहदे में शामिल थी सके थो। मुल्क के मुख्तलिफ इलाक में बरसात जो इम्कान अज पंजाब बलोचिस्तान गिलगित बल्तिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के मथा इन इलाक ए कश्मीर के कुछ इलाक में बरसात पैजी सके थी। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर मुल्क के वन दरियान में पानी के वहकरे में वाद जो इम्कान जाहिर कर छो। तंगवाणी वेझो घर में फुरकलाब गोठान इंडस हाईवे से धरणो गोठ सादिक कोसो में घर में चोरी बिरादरी के मानन इंडस हाईवे बंद कर छो। गोठान चवण हो हथियार बंद घर में दाखिल थी घर बातन के यरगमाल कर बाद तशद किया मोटरसाइकिल बो सामान भी फुरे वाया फुर थियल सामान वापस कराए वे। घोटकी भरसा गुजरियल ढी कतल थियल बिन भायर की तदफीन पुलिस चढ़ायू। अशरफ अली ए शाबान घोटो की जनाज नमाज घोट गुल मोहम्मद घोटो में अदा कई वही। हमले में जख्मी थियल बिन भायर फयाज ए वसीम घोटो जो सखर अस्पताल में इलाज हलंदड़ जवाबदार की गिरफ्तारी लाए पुलिस के कच्चे के गोठन में चढ़ायू जवाबदार घर खाली कर फरार। कानपुर भरसा जहरीलो खाधो खाने सबब फौत थियल टिन बारन की तदफीन माहौल सोगवार मदनी पाड़े में फौत थियल गुलसे मुस्कान जैन कुरेशी जो मड़ खजन वक्त रोजराड़ो मची वो। फौती बारन के जनाजे नमाज में सियासी समाज के अगवान शहरन की शिरकत टिन्हीं मासूम बारन जो मड़ समय आलन अखियन से मिटी माहौल है।

0: ऐं फैज़गंज मां हिकु हफ़्ते खां गुम थियल ॿार जो पतो न पियो। वारसनि जो चवणु आहे त सत वरनि जी काजल खे गुम थींदे हफ़्तो थी वियो। शक आहे त ॿारड़ीअ खे अॻवा कयो वियो आहे। एस एस पी खैरपुर ऐं डीआईजी सखर नोटिस वठी ॿारड़ी बाज़ियाब कराइनि।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300338569।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वग़ैरह बाज़ार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300320437 ऐं 0242460100।
5: जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिटीअ जो मान वधाए।
6: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0302018000003।
7: अस्सलाम वालेकुम अदा।
8: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
7: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
8: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
7: न अदा।
3: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
7: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
8: हा दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
7: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
8: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी,
9: 0301399-2836।
10: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 11:50 a.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दाणो छटाई करने में आसान ये नाइट्रोजन के देर तक दस्तियाबी करे फसल के अना

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: वित्तीय जा रंग रौनकूं ऐं ज़रख़ेज़ी असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो, छटाई करण में आसान, ॿिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिटीअ जो मान वधाए।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनीया जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर, कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर और सूमर से सुबह 10 का शाम 5 वगे तीन मरीजन जो इलाज कंदा आन, हर जुमे छंछर आचर से बगैर फीस के चेकअप कर वेंदो, याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी। माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी खारिश, फट फुरड़ियूं, बारन में कद जो न वधण, मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-8591-8081।
1: छो परेशान आई?
2: अदा नओं दुकान खोलियो अथम पर हले ई नथो, छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
2: न अदा
3: यार, अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
1: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
2: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
3: ऑफिस जी मीरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मीरापुर।
1: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: जा रंग रौनकू ऐं सरखेज़ असां जे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिटीअ जो मान वधाए
1: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नज़द रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ति जिलाई आसिम हुसैन आराई 03073592120
4: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी साथ तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
5: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
6: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
5: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
6: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।
7: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटरी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुजे दुकान जी बे डरंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।
0: आप सुन रहे थे

तुर्किया जे परदेही वज़ीर हाकान फैदान चयो आहे त पाकिस्तान सऊदी अरब ऐं तुर्किया जे दिफ़ाई मुआहिदे जो हदफ़ ईरान न आहे। हीउ नेटो मुआहिदे जहिड़ो आहे, जेसिताईं मेंबर मुल्क ते हमिलो न थींदो ईरान समेत कंहिं बि मुल्क ख़िलाफ़ कार्रवाई न थींदी। नेटो मुआहिदे जे शिक 5 तहत मका मुआहिदे में हिक ॿिए जी दिफ़ा जी ज़मानत ॾिनी वई आहे। नेटो जीअं टई मुल्क हिकु वज़ारती कमेटी क़ाइमु कंदा, जंहिंजो सेक्रेटरेट सऊदी अरब में हूंदो। टेक्निकल मामला हल थियण बाद मिस्र बि दिफ़ाई मुआहिदे में शामिल थी सघे थो। पाकिस्तान खिते में अमुन ऐं तहफ़ुज़ जो ज़ामिन आहे। पेट्रोलियम वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अली परवेज़ मलिक चयो आहे त मका गॾियल दिफ़ाई मुआहिदो पाकिस्तान लाइ फ़ख़ुरु आहे। पाकिस्तान जी हथियारबंद फ़ौज जी महारतुनि जी दुनिया शाहिद आहे। पाकिस्तान मुआशी मैदान में बि कामयाबी हासिलु कंदो। हुकूमत अवाम खे पेट्रोलियम शयुनि में सब्सिडी ॾिनी आहे। तहरान जा 6 मुतालबा तस्लीम थियण ताईं आबनाए हुर्मज़ न खोलियो वेंदो। ईरान जे सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जे सेक्रेटरी जनरल बाकिर ज़ुल्क़दर चयो आहे त मुतालबा तस्लीम न थियण ताईं पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइमु आहियूं। मुतालबनि में ईरान जा ज़ब्त थियल असासा बहाल करणु, ईरानी बंदरगाहुनि जी नाकाबंदी ख़तमु करणु, पाबंदियुनि में नरमी, जंगी नुक़सान जो मुआवज़ो ॾियणु ऐं ईरान ख़िलाफ़ धमकियूं बंदि करणु शामिल आहे। सफ़ारतकारी अमरीका खे ईरान सां मफ़ाहमत ते मजबूर कयो मुआहिदे ते पहुचण लाइ। हाणे सुठो वक़्तु आहे। ईरानी सदर मसूद पशकियान चयो आहे त इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त नामे तहत अमरीका खे आबनाए हुर्मज़ बाबति ईरान ऐं ओमान जी गॾियल गाइडलाइंस ते अमल करणु घुर्जे। हा, भञकड़ीअ जी सूरत में ईरान खे पंहिंजो रद अमल ॾियणो पियो। दुश्मन ॼाणे थो त हू सिर्फ़ु जंग सां ईराननि खे हुकुम मञण ते मजबूर नथो करे सघे। ॾोहारी अमरीकी हुकूमत जो ईरान सां अञा ताईं रवियो तब्दील न थियो आहे। ईरान बि तयारु आहे। मुल्क जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसाति जो इम्कान। अॼु पंजाब, बलोचिस्तान, ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे मथां इलाइक़नि ऐं कश्मीर जे कुझु इलाइक़नि में बरसाति पइजी सघे थी। नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर मुल्क जे वॾनि दरियाहनि में पाणी जे वहिकिरे में वाधि जो इम्कान ज़ाहिर करे छॾियो। ॿारणनि जी अॻवा ऐं पाणी खोट ख़िलाफ़ मेहण में अवामी पोरियत तहरीक जी इहतिजाजी रैली, धरणो। कारकुननि दुआ जा हथ चौक खां घंटा घर ताईं प्यादल मार्च करे धरणो हयो। अॻवाननि जो चवणु हो त सिंधूअ ते कैनाल अॾण वारो फ़ैसिलो कंहिं बि सूरत में क़बूल न कयो वेंदो। सिंध में ॿारनि जी अॻवा जे वधंदड़ वाक्यनि जो नोटिस वठी मुगवी ॿारनि खे बाज़ियाबु करायो वञे।

घड़ी यासीन में आसिफ पठान के कातिलन की गिरफ्तारी लाए शहर में शटरबंद हड़ताल धरणो शहरी समाजी इतिहाद मेहरान शॉपकीपर्स के सर से दखण नाके का रैली कढ़ी वही मुजाहरीन पारा अगूणे SHO हिदायतुल्ला निंदवानी और बेन खिलाफ सख्त नारेबाजी आला अख्तियार कतल में मुलव जवाबदार गिरफ्तार करने मुतालबो इंडस हाईवे से ओवरहेड साइन बोर्ड हादसन जो सबब बनल मंजूराबाद में रहवासन जो धरणो गोठाणन इंडस हाईवे से एहतजाजी मुजाहरों कर धरणो हणी रोड ब्लॉक कर छोड़ो ट्रैफिक मुअत्तल रहवासन जो चवण हो तो ओवरहेड साइन बोर्ड मौत जो राकास बणजी वो है गाड़ियों के छतन से वेठल मुसाफिर फौत थी वन था टिन महीन दौरान टे मुसाफिर ओवरहेड साइन बोर्ड से टकराजी हयाती वजाए वेठा अख्तियारियों नोटिस वी मौत जो राकास बणल ओवरहेड साइन बोर्ड हटाए इंसानी जानू बचाई

0: तंगवाणी वेझो घर मां फुरख खिलाफ़ ॻोठाणनि जो इंडस हाईवे ते धरणो। ॻोठ सादिक लाशारी में घर मां चोरी खिलाफ़ लाशारी बिरादरी जे माण्हुनि पारां इहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो वियो। ॻोठाणनि जो चवणो हो त हथियारबंद घर में दाख़िल थी घरभातियुनि खे यरगमाल बणाए फुलुट करण बाद फरार थी विया। कड़ी खैरो में वधंदड़ बदअमनी खिलाफ रावासी सरापा एहतजाज बणियल। सिंध बलोचिस्तान दंगल।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद, बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307359210।
3: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर असा वट जगह जो डारियो जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 आई तौकीर अहमद 0306-1623-793।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320180003।
4: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-335-69।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा?
7: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
7: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
8: 0301-399-2836।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है।
8: सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी

तुम्हारी उम्मीद और मौजूदों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद और मौजूदों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सुनने बदंदर तमाम खूबसूरत मासूमई सुने समात उनके मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। पुरकुल दुआ के संबंध है, चादों की बारिश लाजवल खजानों के साथ दुआ है, पल से पल तक आज से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात नीचे जागता समय से आसमान तक जिंदगी से मौत एक सांस से तार तक से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमत और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब आप सुन रहे हैं लाड़काना के लाइव स्टूडियो से हमारा ये ब्यूटीफुल सा प्रोग्राम जिसका नाम है व्हाइट एश एंडी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम व्हाइट एश एंडी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, आपकी खूबसूरती की जमानत है जनाब। अगर आप हसीन बनना चाहते हैं, खूबसूरत बनना चाहते हैं, खूबसूरती की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा कि ना सिर्फ आप अपनी खूबसूरती का ख्याल रख सकेंगे बल्कि आप अपनी खूबसूरती को जो है ना वो प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसी के साथ साथ आपको जो खूबसूरती मिल रही है उस खूबसूरती को अगर आप ये चाहते कि भाई वो हमेशा हमारे पास मौजूद रहे और कभी भी ऐसा वाला सीन ना बने कि हम ऐसे कोई प्रोडक्ट का इंतखाब कर लें जो कि हमारी स्किन को मजीद खराब कर दे, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपको बताया जाएगा प्रोग्राम के अंदर कि आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती को महफूज भी कर सकते हैं, खूबसूरती की हिफाजत भी कर सकते हैं और हमेशा के लिए खूबसूरत भी बन सकते हैं। बिल्कुल सुना, तो ये सब कैसे होने वाला है, क्यों होने वाला है, कब होने वाला है, सब कुछ बताएंगे, लेकिन कितना कितनी जल्दी क्या है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है। तो बिल्कुल जी, जरा अपना भी तारुफ करवाते हैं। सो लिसनर्स फॉर प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा के साथ मौजूद है जनाब इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। आज यहाँ पर जितने सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जितनी भी समाते हैं, तमाम तो लोगों को वेलकम इन खुश आमदीद कहा जाएगा। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और साथ ही साथ जरा अपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स, अंत के फहालत कैसे है आपकी हालत, उम्मीदन शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुपकूल मूड के साथ सुपकूल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है और फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ही ली। आपको पता ना, जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारे साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरी पूरी 3 बजे तक, यानी कि 2 घंटे हमारे पास मौजूद होने वाले हैं। और इन 2 घंटों में बिल्कुल जी, हम आप लोगों के साथ इन्नी शाली बातें करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी, ऐसी बहुत सारी अंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान। सो भी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुने लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज अली रे सिद्राली बोस आपके होंठों पर 440 सौ की समाल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 सौ की समाल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। और आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जी आज एक बहुत प्यारे से कलाम के साथ। तो बहुत प्यारा कलाम सुनते हैं, उसके बाद हम जैसे ही वापस आप लोगों के पास मुखातिब होते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंडी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरतियां हासिल कीजिए।

मेरा वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
1: न अदा
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नर्थ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

ओके जी, उसके अलावा अगर आप कोई अच्छी सी फेयरनेस क्रीम लगाना चाहते हैं तो व्हाइटिश लवली क्रीम आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर पिंपल एंटी एक नई ट्यूब भी आपके लिए अवेलेबल है। ये तमाम प्रोडक्ट्स कैसे काम करते हैं, कैसे वर्क किया जाता है आपकी स्किन के ऊपर, वो आप लोगों को बताते हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है सभी को वेलकम एंड खुशामदीद। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और इसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया है कि आप मुझे बताएं कि जब पहली बार संडे आया होगा तो कैसे पता चला होगा कि आज संडे है, क्योंकि भाई पहली बार आया था और पहली बार ऐसा होता कि दिनों के नाम भी नहीं होते थे, ऐसे पता भी नहीं होता था लोगों को। ऐसे जो लोग बोल रहे हैं ना कि बच्चे स्कूल नहीं गए होंगे, छुट्टी थी बच्चों की, तो उस टाइम बच्चे भी स्कूल नहीं जाते होंगे। पहली बार संडे आया था, सोचो पहली बार संडे आया था, तो उस टाइम कैसे पता चला होगा कि भाई आज संडे है। तो जल्दी से बताइए हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनते जाइए। और उसके अलावा जल्दी जल्दी से अपने होने का एहसास लाते जाइए। फेसबुक की पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना, ये आप लोगों का काम होता है, तो जल्दी से पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए। और इसी के साथ साथ मुझे बताइए कि आप लोगों के करीबी जनरल स्टोर्स पर व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हुए या फिर अभी तक नहीं। अवेलेबल हुए तो बहुत बढ़िया, परचेज कीजिए, नहीं तो फिर आपने डायल करना है 03-12-5-0-2-5-9-0-7 और उसके अलावा दूसरा नंबर है 03-27-38-4309 03-27-38-4309। ये नंबर्स आप डायल कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी व्हाइटिश के तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएं एंड डी स्किन के भी तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएं। तो बिल्कुल सी बात यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करते चले। तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में अगर आप व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम आपकी स्किन के लिए बहुत एक अच्छी सी क्रीम साबित होने वाली है, क्योंकि व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करने वाले लोग अच्छे से जानते हैं कि व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम का कितना अच्छा वाला जलवा है। तो आप व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा जो कि एवोकाडो, एलोवेरा और मिल्क से तैयार की गई है। ये तमाम चीजें व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम के अंदर ऐड की गई है, तो इसका भी कोई टेंशन नहीं कि भाई आप लोगों की स्किन खराब हो जाएगी, क्योंकि नेचुरल अज़ा ऐड किए गए हैं। और व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम आपके जल्द को खूबसूरती और निखार देती है और एक ऐसी बेहतरीन ब्यूटी क्रीम है जो आपके जिल्द को नरम, मुलायम और तरोताजा बनाने में भी मदद देती है। और व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपके चेहरे की जो खुश्की होगी, दाग धब्बे हैं, बेरोनकी है, सब चीजें कम हो जाएंगी, जबकि आपकी जिल्द ज्यादा साफ और चमकदार महसूस होना स्टार्ट हो जाती है। तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम में शामिल है जनाब खास और खसूसी अज्जा जो कि आपके जिल्द की हिफाजत करते हैं, कुदरती खूबसूरती को उजागर करते हैं और रोजाना इस्तेमाल से आपके चेहरे को फ्रेश और खूबसूरत और पुरकशिश लुक भी देते हैं। तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम है जिसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही बेस्ट सा ऑप्शन आपके पास मौजूद है। तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल लाजमी करके देखिएगा। ओके जी, उसी के साथ साथ आप जानते हैं कि व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम के साथ आपको व्हाइटिश ब्यूटी सोप भी मिल रहा है। और व्हाइटिश ब्यूटी सोप तो भाई कॉमन ही, आप घर के सारे लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाइटिश ब्यूटी सोप को आपके घर में जितने भी लोग हैं वो सारे यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का वाला सोप है। और उसी के साथ साथ सोप को आप जैसे यूज करते हैं वैसे यूज करेंगे, सोप को क्यों यूज किया जाता है ये तो आप पहले से जानते हैं। और उसी के साथ साथ व्हाइटिश का फेस वॉश भी आपको मिल रहा है। अगर आप ऐसा वाला सीन बना रहे कि हमने फेस वॉश करना है तो वो व्हाइटिश फेस वॉश से आप अपना फेस वॉश करेंगे, बाकी अगर आप नहाना चाहते हैं, आप अपनी बॉडी पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको व्हाइट एज का ब्यूटी सोप अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वो तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इजीली कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं, तो बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। आप बस अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाइए, वहां से नाम लेकर ना तलब कीजिए, नहीं मिलते तो जो नंबर आपको बताया उसके ऊपर राबता कीजिएगा और आप भी इस्तेमाल कीजिए व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, व्हाइट एज फेस वॉश एंड व्हाइट एज ब्यूटी सोप, ताकि आपको भी एहसास हो कि आपके पास अच्छे वाले प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। ओके जनाब, तो यहाँ पर गाने भी आप लोगों को सुनाए जाएंगे, गाने भी हमारी लिस्ट में मौजूद हैं और साथ ही साथ बहुत ज्यादा वाली बातें जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और उसके अलावा पहले हम ऐसा करते हैं थोड़ा सा गाना सुन लेते हैं, आपके मैसेजेस भी हैं उनकी जाने भी आते हैं। आप ऐसा कीजिए, पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए।

ओके जनाब, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है अल्लाह रखियो मेमन भाई और मेरे बेटे हैं खुर्शीद अली सनाउल्ला अताउल्ला अली डिनो अली शेर और मोहम्मद हसन मेमन और क्यूट बेबी फातिमा बतूल भी आपके साथ हैं। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया। तमाम सुनने वालों को वेलकम कहा जाता है। अल्लाह रखियो मेमन भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। और मकसूद मल्ला हमारे साथ है। गुड आफ्टरनून सिद्रा मुस्कान। डी स्किन क्रीम बहुत अच्छी है, बल्कि बहुत से भी बहुत ज्यादा अच्छी है। यकीन करो अब तो हमें कोई ओके जी, बहुत बढ़िया, आप इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम और इसी के साथ साथ आपकी पसंद का गाना लगाया जाएगा। रसूल अब्बासी आबिद हुसैन शम्बानी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम। टॉपिक मुझे सैटरडे ने पहले ही बता दिया था कि कल संडे आने वाला है, तैयार रहना। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा चाचा खाले तम हाँ मौजूद है पैनल ते, बिल्कुल तमान जी पसंद जो गानो हलायो विंदो। मकसूद मल्हा कहते हैं जवाब, जाहिर सी बात है बच्चे स्कूल गए होंगे तो वो नहीं गए होंगे तो पता चल गया होगा आगे संडे में बच्चे कैसे जाएंगे, वो तो बहुत पहले की बात है ना, स्कूल भी नहीं बने होंगे तब मुझे ये लगता है। तो जब पहली बार संडे आया था तो कैसे पता चला होगा। अच्छा साइमा मीर हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम की थी माशाल्लाह सिद्रो, एक शो और करती हो वो भी शाम को, गुड गुड। वैसे वो शो कैसा होता है, क्या होता है उस शो में? 5 बजे आई एम फुल बिजी ऑन ड्यूटी, लेकिन वो शो होता भी जस्ट लाड़काना में है तो आना पड़ेगा आपके सिटी। जी बिल्कुल, आप कोशिश कीजिए लाड़काना में आप घर ले लें ताकि आप लोगों को हमारे शो सुनने में आसानी हो जाए। वैसे वो भी स्पॉन्सर्ड शो है और थैंक यू सो मच आप हमारे साथ मौजूद हैं। चाचा खालिद कहते हैं संडे फर्स्ट टाइम जब आया था तो हिस्टोलॉजी में उसको डे ऑफ सन कहा गया था। योर टॉपिक आंसर ओके। अच्छा ये हमारे साथ मौजूद है साइमा कहती हैं जी अल्लाह करे तुम जल्दी पुप्पो बन जाओ, वो भी रियल वाली। बाकी ड्रामा में तो बुआ को बुरा दिखाते हैं, ऐसा होता नहीं, हम जान देते हैं सुकून वाली। अच्छा हाँ नहीं, हाँ पर्सनल लाइफ में मैंने देखा है अपनी पुप्पियों को तो बस एक दो ही अच्छी है, बाकी तो अल्लाह पना रे। अच्छा ये हमारे साथ ही आरजे सिद्रा जी सलाम कबूल करे, मोहम्मद शरीफ कुंभ विलेज नबी बख्श खां असा सगन मौजूद है। ओके जी भाजू मोहब्बतान प्रोग्राम बुधो पया मुखे दियो हाल अहिवाल तमाचे गोठन में तमाचे सिटीज में वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलन था कौन। ओके जी क्या बात है, घोटे जी शादी कराई सी मत आना मनो आने वाली फायजा वाली आई तो ढो भलो गानो गाई दी।

वाह साईं वाह, वाह साईं वाह। ॾाढो भलो गानो ऐं ॾाढा भला प्रोडक्ट आहिनि जेके तव्हां इस्तेमाल कयो पिया। वाइट एश ब्यूटी क्रीम आहे, वाइट एश ब्यूटी सोप आहे, वाइट एश जो फेस वॉश आहे ऐं वाइट एश जी लवली क्रीम बि अथव। बाबा ॿुधायूं था, ॿुधायूं था, इन्हनि जो छा कमाल आहे। पर थोरो खिल त सही। अजय फजीला सिंधी हमारे साथ मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी संडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आर्य सिस्टर सिद्रा मुस्कान, आप कैसी हैं? सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात और बाजी को, ऑल स्वीट सिस्टर्स को। कहती आई एम नाराज, व्हाई यू नाराज, व्हाई? अरे भाई मान जाओ अब। वासा भाई हमें सुन रहे हैं, थैंक यू वासा भाई। मदली कहती है कि मैं भी आ गई, वेलकम। तो हाँ जी, वेलकम किया जाता है हमारी प्यारी निदड़ी को। और मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। चाचा खालिद कहते हैं कि मोहब्बत में हर्फ बा हर्फ मुझे मांगना नहीं आता, मैंने अदाबे दुआ से बहुत आगे तुझे चाहा। वाह वाह।

ओके मीरपुर खास में प्रोग्राम नहीं सही चल रहा है भाई, मीरपुर खास वालों सही से प्रोग्राम कनेक्ट किया करो, बहुत बुरी बात होती है। अच्छा रशीद खोसो भाई हमें सुन रहे हैं, रशीद खोसो हैदराबाद से आप हमारा शो सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, आपको वेलकम कहा जाता है। जाम तालिब सोलंगी हमारे साथ है, मोरो का तवा से प्रोग्राम बुधो पया शमन जो गानो बिल्कुल तवा की बुधरायूं था, थैंक यू तवा से सगड़ा है। अच्छा ये मीर एजाज नूनारी भाई हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। अच्छा नदली कहती टॉपिक मुखा जोर नकर बाबा नकर। अच्छा प्यारी मोमना कहती टॉपिक क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है ना तो पता चल जाता होगा कि संडे है और मैं मोरो से आपका शो सुन रही हूँ, क्या बात है मोमना, आपको वेलकम कहा जाता है, थैंक यू आप हमारे साथ हैं स्वीटी। अच्छा वासा भाई कहते हैं टॉपिक के ऊपर ना आपने जो जवाब दिया है वो बहुत ही वखरा सा जवाब है, सो थैंक यू सो मच। अच्छा सादिया कहती है यहाँ पे ये पोइट्री है, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ा बेदर्द निगाहे जमाना है, वाह वाह वाह वाह, दर्द दिल आ चुकी है। वालेकुम अस्सलाम चंदा जानी बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताए कैसी है। हाँ बाबा खिलो खिलो छो तवा मूड खराब करे वेठा आयो, उन खां अलावा अगर तवा मूड खराब करण सा गडो गड पांची स्किन भी खराब करे वेठा आयो त इए न कियो बाबा, इए न कियो, सोणा सोणा थियो आई, सोणा सोणा थियण सा गडो गड तवा वट वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स मौजूद आहे, आई वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तवा के बिल्कुल खबर आहे, अतः जितना भी प्रोडक्ट्स आन हो सब तमाचे इसके जे मुताबिक तैयार थे लायन, आई वाइट एज लवली क्रीम जे अगर गाल कई वने तो वाइट एज लवली क्रीम एकड़ो एड़ो फार्मूलो आए एकड़ी एड़ी फेयरनेस क्रीम आए। अच्छा फेयरनेस क्रीम जो जडे भी जिक्र इना त या गाल तमा के बिल्कुल खबर हुंदी त फेयरनेस क्रीम जका हुंदी वो सबनी मानन चलाए हुंदी आए, जी असा नाइट क्रीम हुंदी आ तो नाइट क्रीम के टीनेजर्स मानू लगाए सगन था, एजेड लगाए सगन था, पर बचड़ा बार नथा लगाए सगन, तो बिल्कुल अगर असा फेयरनेस क्रीम जो जिक्र कयो त फेयरनेस क्रीम एक ओ प्रोडक्ट हुंदो जेके तमा घर जा सब भाती लगाए सगो था, यानी कि बचड़ा भी लगाईंदा बार भी लगाईंदा आई कुराड़ा मायो जवान हर को लगाईंदो, सो वाइट एज लवली क्रीम एकड़ो ओ प्रोडक्ट आहे जेको न सिर्फ इन लाइ तैयार कयो आहे त बाबा तवा के सिर्फ फेयरनेस मिले तवा के सिर्फ निखार मिले, बल्कि वाइट एज वारन एतरो तवा जे स्किन जो ख्याल कयो आहे, त वाइट एज लवली क्रीम जेका ट्री हब विटामिन जे कैप्सूल सा तैयार थियल आहे, उन खां अलावा जेको आहे जे अंदर सनस्क्रीन भी एड कई वई आहे, सनस्क्रीन एड करण जो मतलब ऐं मकसद इहो आहे त तवा जी स्किन ते जेका खूबसूरती आहे उहा त तवा के मिले पर तवा जी स्किन ते जेको नुकसान पवंदो आहे न सिज जे असर किरणा हुंदा स्किन ते नुकसान पहुंचाईंदा स्किन के जेको आ वो हिफाजत मिले, सो वाइट एज लवली क्रीम तमा लगाए सगो था बाबा, तमा ऑफिस वन्यो था कमकार कयो था कोई तमा जी जॉब आहे तमा पढ़न वन्यो था तमा पढ़ाण वन्यो था तमा कोई भी कम कयो था बस तमा वाइट एज लवली क्रीम जो इस्तेमाल कयो आई तमा ही रेडी थी वेंदा आई तमा के खूबसूरती भी ओ ही मिली वेंदी, सो कोई फंक्शन आ को पार्टी आ किथे तमा के शादी ते वञणो आ गर्मी आ तमा मेकअप नथा लगाए सगो तब बाबा तमा वाइट एज लवली क्रीम जो इस्तेमाल करे सगो था, गाल तव सिद्धि ठीक आ मनण मुराद वाण आहे, उनका अलावा डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब भी आए जेको तमा एक्नी के खत्म करण लाए लगाए सगो था, पर न सिर्फ एक्नी तमा जे चेहरे ते एक्नी आए एक्नी जा निशान आए तमा जे चेहरे ते कोई चोट जो निशान आ को सड़न जो निशान आ को कट जो निशान आ केडा भी पुराना केडा भी जिदी निशान अगर तमा जे स्किन ते मौजूद आए तो बस तमा सिर्फ डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो इस्तेमाल कयो ऐं इस्तेमाल करण खां फौरन बाद ही तमा के अंदाजो लगजी वेंदो त बाबा असां वाके ॾाढी भली शइ इस्तेमाल कयूं पिया, सो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जेको तव्हां इस्तेमाल करे सघो था तव्हां जे स्किन ते जेको एक्स्ट्रा ऑयल हूंदो आहे उहो बि ख़तम थी वेंदो ऐं तव्हां जी स्किन सफ़ा लश पश थी वेंदी, सो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब खे तव्हां कीअं लॻाईंदा छो त लॻाइण जा तरीक़ेकार थोरो तव्हांखे ॿुधाइणु ज़रूरी हूंदो आहे, सो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब खे तव्हां ईअं लॻाईंदा त तव्हां सुबुह जो बि लॻाईंदा ऐं तव्हां राति जो बि लॻाईंदा, लॻाइण खां पहिरियां तव्हांखे पंहिंजो फेस वॉश करिणो आहे, तव्हां वाइट एज जे फेस वॉश सां या वरी साबुण सां पंहिंजो फेस वॉश कंदा, उन खां पोइ चङी तरीक़े सां पंहिंजे फेस खे सुकाईंदा, हथनि खे बि तव्हां चङे तरीक़े सां क्लीन रखो, उन खां पोइ जिते जिते निशान आहे जिते चोट आहे जिते सड़न जो निशान आहे उते तव्हांखे डॉट डॉट करे लॻाइणो आहे, पूरे पंहिंजे फेस ते न लॻाइजो, पूरे फेस ते लॻाइण वारो प्रोडक्ट न आहे, जिते जिते तव्हांखे प्रॉब्लम आहे उते उते लॻायो ऐं लॻाइण खां पोइ तव्हां बसि छॾे ॾियो, सुकून अची वेंदो तव्हांखे थधो थधो फील बि थींदो ऐं तव्हांखे मज़ो अची वेंदो ऐं कुझु ई ॾींहंनि खां फौरन बाद तव्हां महसूसु कंदा त बाबा हिते को निशान हूंदो हुयो, ॾिसो ॾिसो हाणे कोन अथव, सो इहो कमाल आहे डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो।
बिल्कुल ये सवाल पुछो आज मां अवां खा मुखे बुधायो तवां जदी पहरियो संडे आयो हो पहरी मर्तबा संडे आयो हो इन दुनिया में पहरियो दफो संडे आयो त कीया खबर पई त अज संडे आ

0: बिल्कुल जनाब, आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। पोस्ट को लाइक और शेयर किया करें, कंजूसियां नहीं बनती यहां पर। अशफाक खुड़ो कहते हैं टॉपिक संडे मोकल जो डे आए इन करे खबर पवे थी ता जो संडे आए। अरे बाबा पहरे संडे जी गाल हले पई थे। दर्द दिल कहती है मैं और अलीसा शो सुन रही है, एंजॉय अमेजिंग शो एंड ब्यूटीफुल वॉइस माई जानी, माशाल्लाह थैंक यू सो मच प्यारी दर्द दिल और अलीसा। अच्छा हिदायतुल्लाह कहते हैं कि मैं बुरा नहीं, मेरी भी कुछ कहानी है, ये जो बदला बदला सा लगता हूँ ना ये अपनों की मेहरबानी है। गैर तो गैर है, गैरों से क्या गिला, लेकिन अपने तो अपने हैं, अपनों से क्या मिला, अहिली सब फटिया बिठाए। अच्छा सादिया कहती हैं टॉपिक संडे का अच्छा पता नहीं क्या कह रही है। ओके जी हैप्पी कहती है आरजे, मुझे तो पता नहीं पहले संडे आया था तो कैसे पता चला था। अखलाक भाई हमें सुन रहे हैं, नाइस यो, थैंक यू अखलाक भाई। और प्यारी मोमना कहती है फायजा का गाना, फायजा जो गानो हाने बुधो सी सोनी, थैंक यू तमाम से सगड आयो। किशोर भाई कहते हैं सलाम अदा, आज स्मार्ट बिस्तर में या तबियत थोड़ो नाजुक आ है, नाजुक या नासाज तबियत जो ख्याल रखो बाबा, तबियत जो ख्याल रखो। चवंदा आहिनि जीउ ख़ुशि त जहान ख़ुशि। अच्छा जल्दी जल्दी ठीक थी वञो, डॉक्टर खे ॾेखारियो, दवा बवा खाओ, गोरियूं खाओ, गोरियूं। अच्छा हुन खां अलावा तव्हां वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु बि कजो, सही आहे। अच्छा सादिया कहती आप ही आज किसकी शादी करवा रही, घोट जी शादी कराई सी, घोट जी। आदल कहते हैं जवाब पहली बार जब संडे आया था तो पत्ता ऐसे चला, बैंक बंद थी। अच्छा माना यह गाल हुई, सही सही। ओके सो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। सो डिंगोवा बाबा गोट तुझो जो उनमें व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स कोन के जल्दी तव्हां अवेलेबल करायो, खूबसूरती जो ख्याल रखो ऐं सुहिणा सुहिणा थी वञो। टाइम थियो आहे न्यूज़ ब्रेक, उन खां पोइ जल्दी मोटी तव्हांजी अचूं था, गाॾी में वञो, हिते वेठा हुजो, मां उहीं वञी उहीं मोटा थी। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो।
1: It's 2 p.m. This time check is...
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज,
3: ब्रॉट टू यू बाय
4: सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी जो मान
5: सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी जो
6: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम, इसमें मौजूद विटामिन
7: पारां दहशतगर्दीअ जे मुकमल ख़ात्मे ताईं ऑपरेशन रद अल-फितना 3 तहत कार्रवाइयूं बिना फ़र्क़ जे जारी रखण जो असर। तुर्किया जे परॾेही वज़ीर हाकान फैदान चयो त पाकिस्तान, सऊदी अरब ऐं तुर्किया जे दिफ़ाई मुआहिदे जो हदफ़ ईरान न आहे, हीउ नेटो मुआहिदे जहिड़ो आहे। जेसिताईं मेंबर मुल्क ते हमिलो न थींदो, ईरान समेत कंहिं बि मुल्क ख़िलाफ़ कार्रवाई न थींदी। नेटो मुआहिदे जी शिक 5 तहत मका मुआहिदे में हिक ॿिए जी दिफ़ा जी ज़मानत ॾिनी वई। नेटो जी या टई मुल्क हिकु वज़ारती कमेटी क़ाइमु कंदा, जंहिंजो सेक्रेटरेट सऊदी अरब में हूंदो। टेक्निकल मामला हल थियण बाद मिस्र बि दिफ़ाई मुआहिदे में शामिल थी सघे थो। पाकिस्तान खिते में अमुन ऐं तहफ़ुज़ जो ज़ामिन आहे। पेट्रोलियम वारे वज़ीर अली परवेज मलिक चयो त मका गॾियल दिफ़ाई मुआहिदो पाकिस्तान लाइ फ़ख़ुर जहिड़ी ॻाल्हि आहे। पाकिस्तान जी हथियारबंद फ़ौज जी महारतुनि जी दुनिया शाहिद आहे। पाकिस्तान मुआशी मैदान में बि कामयाबी हासिलु कंदो। तहरान जा छह मुतालबा तस्लीम थियण ताईं आबनाह हुर्मुज़ न खोलियो वेंदो। ईरान जे सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जे सेक्रेटरी जनरल बाकिर ज़ुल्क़दर चयो त मुतालबा तस्लीम न थियण ताईं पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइमु आहियूं। मुतालबनि में ईरान जा ज़ब्त थियल असासा बहाल करणु, ईरानी बंदरगाहनि जी नाकाबंदी ख़तमु करणु, पाबंदियुनि में नरमी, जंगी नुक़सान जो मुआवज़ो ॾियणु ऐं ईरान ख़िलाफ़ धमकियूं बंदि करणु शामिल आहे। सफारतकारी अमरीका के ईरान से मफाहमत से मजबूर किया। मुआहदे से पहुंचने लाए हाने सुठो वक्त है। ईरानी सदर मसूद पशकियान चयो त इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्तनामे तहत अमरीका के आबनाह हुर्मुज़ बाबत ईरान ए ओमान की गडियल गाइडलाइंस से अमल करण घुर्जे। हा भंजकड़ी की सूरत में ईरान के पांजो रद्द अमल देणो पयो। दुश्मन जाने तो सिर्फ जंग से ईरान के हुक्म मनण से मजबूर नथो करे सके। डोहारी अमरीकी हुकूमत जो ईरान से अञा तई रवैयो तब्दील न थियो आहे।

0: ऐं कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320-18-00-003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा।
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
7: जरूरी थोड़ी है कि आप जिस चीज में अच्छे हैं उसी को अपना करियर बनाएं। I realized I was made for music.
8: जब तक मैं जिंदा हूं तुम वो सब कुछ करोगे और सुनोगे जो मैं

0: परवरिश देखिए हर पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: It's 2:15 PM.
2: This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
4: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
5: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
6: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

से बताइए और हमारे प्रोग्राम का ऐसा बंदे जो आइए। और कमर्शियल तो वाकई कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, मैं सोच रही थी खत्म होगा लेकिन ये इतना लंबा चला के आए हाय मैं ही बोर हो गई। ओगरी तो बिल्कुल आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगाइए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने के बहुत सारे आपके पास जो है ना वो वजूहात मौजूद होंगी, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने से सबसे पहले जो है ना ये बात आप सुन ले कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया गया है जो कि मेडिकेटेड फार्मूला है। और मेडिकेटेड फार्मूला जो होता है ना इसका मतलब ये होता है और मकसद ये होता है कि आप लोगों के चेहरे को खूबसूरत बनाने के साथ साथ आपके चेहरे की हिफाजत भी की जाए। तो जिन लोगों के चेहरे की स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है वो कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा पाते हैं और प्रोडक्ट ना लगाने की वजह से उनकी स्किन जाहिर सी वो खराब हो जाती है, तो उस खराब स्किन को रिपेयर करने के लिए, ठीक करने के लिए और अपने खूबसूरत से चेहरे को हमेशा खूबसूरत रखने के लिए आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बिल्कुल जनाब, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर विटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स फॉर्मुलेशन है, अल्फा अरबुटीन है, कॉजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर एड की गई। और आप तमाम इन चीजों को सुनकर ये लगता होगा कि भाई ये तमाम चीजें हमारी स्किन के लिए क्या जरूरी है, तो बिल्कुल जी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब ये तमाम चीजें आपकी स्किन के अंदर तक जाती है तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा खूबसूरत होना स्टार्ट हो जाती है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी जिल्द को खूबसूरत और हिफाजत के लिए तैयार की गई है, यानी कि आपके चेहरे को खूबसूरती भी मिलती रहे, आपकी स्किन की हिफाजत भी होती रहे। और एक मयारी ब्यूटी क्रीम है, ये आपकी जिल्द को नमी फराहम करती है और चेहरे को नरम मुलायम और ताजा रखने में भी मदद देती है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का अगर आप इस्तेमाल करते तो आपकी जिल्द पर जितने मसाले वो सारे दूर होते जाते हैं, आपका चेहरा ज्यादा साफ रोशन और दिलकश दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम में शामिल है जनाब जितनी सारी चीजें आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी और आपको जनाब इतना खूबसूरती का एहसास मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि जब आप कुछ ही दिनों के बाद अपना चेहरा देखेंगे ना तो आपको एहसास होगा कि वाकई भाई आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट मौजूद है जिसके इस्तेमाल से आपकी खूबसूरती में ना चार चांद लग चुके हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम है तो इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल कीजिएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी स्किन के लिए बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल परफेक्ट है, तो आप लाजमी ट्राई करके देखिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है। और डी स्किन फेस वॉश के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं कि इतना प्रीमियम क्वालिटी का फेस वॉश है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है। अगर आप इन दोनों प्रोडक्ट को एक साथ लगाते हैं तो आपको सच बताऊं तो अमीरों वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि आपको एहसास होगा कि वाकई आप कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। और एक मजे की बात ये भी आ जाती है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन फेस वॉश हो, इन दोनों प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के बाद आपको जो खूबसूरती मिलेगी, आए हाय आप इतना प्यारे हो जाएंगे, आप इतना सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि आप कहेंगे कि भाई हम पहले से तरह की बात क्यों नहीं मान रहे थे। तो खैर अभी भी देर नहीं हुई, आप अभी भी हमारी बात मान सकते हैं। तो बिल्कुल डी स्किन फेस वॉश का आप यूज करेंगे और डी स्किन का फेस वॉश जो है इसके अंदर हाइलूरोनिक एसिड सीरम ऐड किया गया है जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, क्लीन करता है और डीपली आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है। तो जल्दी जल्दी से आप डी स्किन का फेस वॉश यूज कीजिए, उसके बाद डी स्किन ब्यूटी क्रीम अप्लाई कीजिए, क्योंकि जब आप डी स्किन फेस वॉश एंड डी स्किन फेस वॉश दोनों डी स्किन फेस वॉश एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम दोनों चीजें साथ में इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने के फौरन दो दिन बाद आपको अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, ये भी चीज याद रखिएगा। तो जल्दी जल्दी से इस्तेमाल कीजिए अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो जनाब डायल कीजिए 0332738439। योर नंबर है 0312502597। जल्दी से नंबर ते राबतो कयो ताकि तमाम जे करीबी जनरल स्टोर से भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम आई डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल थी वजे। अच्छा इते तमाम सोनो गानो हलायो आ ही गानो आदिल के डेडिकेट आयो, तो आदिल तमाम जो गानों चयो न मुख्य ख्याल आया तो उन बदली असा ही गानों बुधन घुर्जे।

ओके जी बिल्कुल, आपके मैसेजेस हैं तो आपके मैसेजेस की जाने भी आ जाते हैं यहाँ पर, आप लोग हमें सुन रहे हैं, पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिएगा लाजमी। अच्छा ये हमारे साथ आशिक अली मल्हा फ्रॉम बकर अब्रो, सलाम जी, हमें कोई अपनी पसंद का गाना सुनाएगा, डेडिकेट ऑल सुनने वालों को और आपको भी, थैंक यू सो मच आशिक अली मल्हा भाई, आपको वेलकम कहा जाता है। राशिद अवान हमारे साथ फ्रॉम मेहरापुर से कहते हैं, सबसे पहले 7 दिनों के नाम जब मैंने रखे थे तो उसके बाद जिस दिन संडे आया सबको पता चला कि आज संडे साहब आ चुके हैं। सही है भाई। आपने लिखा है सबको सलाम, सबकी तरफ से वालेकुम अस्सलाम। और ये मौजूद है सलाम बाजी सिदरा जुल्कनेन खोड़ो हमारे साथ है फ्रॉम आकिल, कहते हैं दर खड़कियो बाहर निकतम हमरा बाहर बीठो हो पुछो मास बुधाए पुछो मास केर बा बुधाए वयो मुझो नालो आचर थई। माना ये खबर पे अब सही सही सही।

स्वामी जी बक्तली सियाल भाई में सुन रहे हैं वेलकम कहते हैं किशोर भाके ते अज मुजो खंड जो जहाज त कोन बुडो आ पर तबे जो जहाज बुडी वयो आ है संडे तवा जो मतलब ज्ञान थी वयो आईली दुख थियो नेदरी कहती है उसको बोलो नाराज ही रहो क्योंकि तुम वैसे किसी को नहीं मनाती हकीकत त वाला जेको नाराज थी ना उनका उल्टो नाराज थी वेंदी है वनी मनायो हाने अच्छा ये स्मार्टू गोपांग हमारे साथ कहते हैं वाह वाह जबरदस्त सॉन्ग थैंक यू कहते अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम कंबर सिटी से आप हमारा शो सुन रहे हैं और कहते सिद्रा हां जी बोल लें

0: ओके डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी था बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम के भी याद रखो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के भी इस्तेमाल कंदा रहो उन के अलावा एकड़ो बियो भी गानो सा लिस्ट में आ ही गानो भी बुदंदा सी डाडो भलो गानो आ है और उन के अलावा मिदड़ी कहती है कि जब सुबह सुबह मूड खराब हो जाए तो सारा दिन खराब ही रहता है ऐसा क्यों भला छो त ॾींहं जो चवंदा आहिनि आगाज़ सुठो थियणु घुरिजे अगरि आगाज़ सुठो न थींदो त ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे अंजाम बि सुठो रहंदो
1: ओ गोली मार अहिड़े सुणे खे जो लिफ्ट न करा

खाओ हकीकत अथव बेसर जेको डिसी नथी करे पयो बस हाणे तव्हां पाण सोणा थी वञो नी तव्हां पाण डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सोणा थी वञो पोइ कंहिंखे बि लिफ्ट न कराइजो अला और चाचा खालिद कहती है आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी है पब्लिक को मैं तो चाहती हूँ ऐसा हो जाए अच्छा अली मुर्तजा आ चुके हैं कहते सलाम हाउस यू मैं ठीक हूँ आप बताएं कैसे हैं और कहाँ गुमसुम हैं मोहम्मद वीरन जखरानी हमें सुन रहे हैं जेका बाबासी भाईजान आपको वेलकम कहा जाता है किशोर भाई कहते हैं पेज के डॉक्टर डां वठी वनो पेज के या तवांगे अशफा कहते हैं डिंगो आ गोठ तुंजो डिंगिया जात प्यारा माय फेवरेट सॉन्ग अल्लाह जाय बुदा अच्छा स्मार्टो गोपां कहते हैं टॉपिक संडे का नाम किसी एक दिन देखकर डिसाइड नहीं हुआ था लोगों ने वक्त को दिनों के साइकिल में डिवाइड किया और 7 दिन का वीक बनाया और इन 7 दिनों को अलग अलग नाम दिए गए इसीलिए जब पहला संडे आया लोगों को पहले से पता था कि ये 7 डे साइकिल का संडे वाला डे है ओके सही सही

0: गोली मार कहड़े सोने के जो लिफ्ट न कराए, गोली मार कहड़े प्यारे के जो लिफ्ट।
1: हां जी, गोली मार एड़े सोने के तमा पाणी सोना थी वणो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे बाबा साईं गाल सिद्धी थव। अच्छा, जाम ताले बस सोलंगी मोरो खास असा गड मौजूद आइन अद्दी तमाके शमन चुकानो बिल्कुल बुधराइंदी तमा पाने सीट ते बैठा हो जो। अली मुर्तजा केते कैफ हालु किया हबीबी? अना बखैर अल्हम्दुलिल्लाह हबीबी। गाना सुनाते हैं आपको हबीबी, सब्र कीजिए हबीबी। अच्छा सादिया कहती हैं आपका शो बड़ा जबरदस्त है, आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए सादिया बताएं तो पता तो चले। ये जो तुम्हारी खूबसूरती जो राज आखिरी केड़ो राज हुआ? शहबाज में सुन रहे हैं, शहबाज हेलो। मारे चले जी। हिदायतुल्लाह कहते हैं कि वैसे आज मेरे पास मेरा दोस्त मुजम्मिल भी आपका शो सुन रहा है और आपको सलाम दे रहा है, शहबाज भी। ओके जी, शहबाज को, मुजम्मिल को और आप तीनों को वेलकम कहा जाता है। और प्यारी मोमना कहती हैं शो नाइस है, फुल फन, थैंक यू वेरी मच प्यारी मोमना। अच्छा हैप्पी कहती आरजे आपने जो, हाँ हाँ मैं कोशिश करूंगी। वसीम अब्बास हमें सुन रहे हैं, वसीम अब्बास नूनारी भाई, एस एन नूनारी शहदादपुर से, नाइस शो, थैंक यू वसीम भाई।

반지. छाता चो ओके बिल्कुल प्रोग्राम तमाम बुधंदा रहो ये टाइम थी वाइज शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो वापसी जल्दी मोटी तमारी चूं था तमाम गाड़ी में जो बैठा हो जो ओही वनी ओही मोटू था सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाई टेश एंड स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय वाई टेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हणो जी सोना थियो

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-8151।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569। रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीमो तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453

जी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और लाड़काना की लाइव स्टूडियो से आपका खूबसूरत सा प्रोग्राम जिसका नाम है व्हाइट एश एंडी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स 57 से। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई खूबसूरत सा शो कैसे हुआ, क्योंकि इसमें खूबसूरती की बातें होती है ना तो खूबसूरत सा प्रोग्राम हो गया। और इसी के साथ साथ आप लोग अगर खूबसूरत बनना चाहते हैं तो बिल्कुल जी खूबसूरती की दुनिया में कदम रखिए और आप भी इस्तेमाल कीजिए जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का। और जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप जानते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और साथ में आपको डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है। अच्छा मुफ्त में नहीं मिलेगा, वो भी आपने परचेज करना पड़ेगा, लेकिन ये दो प्रोडक्ट्स हैं कि आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लेंगे और डी स्किन फेस वॉश भी लेंगे, ठीक है। दोनों चीजें साथ में परचेज कीजिए और साथ में इस्तेमाल कीजिए और आपको मिलेगा ऐसा हुसन, ऐसी खूबसूरती, ऐसा निखार कि आप खुद ही कहेंगे आए हाय चस करा दी। अगर इसी के साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास नंबर मौजूद होना चाहिए जनाब, और नंबर ही आप नोट कीजिएगा 033-27-38-43-09 और दूसरा नंबर है 03-12-50-25-907। अच्छा लोग कहते हैं ना आप स्लो नंबर बताते नहीं है, हम नोट नहीं कर पाते हैं, तो इससे ज्यादा स्लो नंबर मैं नहीं बता पाती, तो ये बस सही है, इतना स्लो नंबर काफी आप लोगों के लिए। और इसी के साथ साथ जल्दी से नंबर के ऊपर रابطہ कीजिए और रابطہ करने के फौरन बाद आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर ना अवेलेबल कराते रहिए। और इससे फायदा ये होता है कि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल होंगे तो आप वहां से जाकर इजीली परचेज कर सकते हैं। तो जल्दी से अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और खूबसूरतियां हासिल करते जाइए क्योंकि ये आप डिजर्व करते हैं। मेरे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर लिसनर्स, आपको वेलकम कहा जाता है प्रोग्राम के लास्ट लिंक में। तो जनाब कहां से सुन रहे हैं, कौन कौन हमारे साथ मौजूद हैं और आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी बताइएगा।

बिना पैसे यार ताबेदार वाह वाह वाह वाह ॾाढो भलो गानो मुनव्वर मौलाई जी गाने जी कहे मुखे फरमाइश कई सो ही गानो उन के डेडिकेट आहे ताबेदार ताबेदार ओके जी पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिएगा और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है आशिक अली मल्हा बकर अबड़ो से भाई को वेलकम कहते हैं विलेज सोनो खास केली से गुलजाली गुलबहार अली दिलबहार अली शहजाद अली सफीर खास केली प्रोग्राम आपका नाइस है थैंक यू वेरी मच तमाम भाइयों को वेलकम कहा जाता है

वाह साईवा वाह साईवा। लुबना भी हमारे साथ मौजूद है। लुबना कहती आई लाइक सिंधी सॉन्ग्स, क्या बात है, आज मुझे लग रहा है प्रोग्राम में सारे सिंधी गाने लगाए हैं। ओके जी, बहुत शुक्रिया आप तमाम तो लोगों का प्रोग्राम को पसंद करते हैं। और ये हमारे साथ हैं अशफा, कहते हैं गोली मार सॉन्ग इज बेस्ट सॉन्ग, थैंक यू। अच्छा साधिया कहती आप ही में व्हाइट एज की लवली क्रीम यूज करती हूँ। ओके जी, आप यूज करती रहिए। और यार परदेसी भाई हमारे साथ मौजूद, कहती है अस्सलाम वालेकुम, वेरी नाइस यू, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई। अली मुर्तजा कहते हैं दुनिया गोल है, मैं भी गोल गोल चक्कर लगाता रहता हूँ, लाल फेरी डींदा बार नंढा घुमंदा आहिनि फिरंदा आहिनि रांदि कंदा आहिनि, पुॼंदा असां लाल फेरी ॾियूं था उहा लाल फेरी। अच्छा आशिक खास के लिए वालेकुम अस्सलाम, कहती आरजे वेलकम करता हूँ प्रोग्राम में, नूर शाह की आवाज में नगमा प्ले कीजिएगा, शुक्रिया नाचीज। आशिक खास के लिए आपको वेलकम कहा जाता है प्यारे भाई। अच्छा चनेसर थेबू भाइयों में सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम यूसुफ खान, चनेसर थेबू हमारे साथ हैं, थैंक यू भाई, थैंक यू। अख्तियार अली सिंधी हमें सुन रहे हैं, वेलकम करते हैं प्यारे भाई को।

बाबा खेड़ा तो हुसन जी कें खां बि न घुरो, बसि तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी अचो। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठण खां पोइ जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कंदा त पोइ पाण ई तव्हांखे हुसन मिली वेंदो। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे, डी स्किन फेस वॉश आहे जेको तव्हां इस्तेमालु कंदा ऐं पंहिंजे चहिरे खे सफ़ा ख़ूबसूरत बणाए छॾींदा। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे बारे में त तव्हांखे ख़बर आहे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे हीअ मेडिकेटेड फार्मूलो आहे, डॉक्टर जी निगरानी जे अंदरि बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे तयारु कयो वियो आहे। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो जेको इस्तेमालु आहे उहो तव्हां सभु करे सघो था, यानी कि अगरि तव्हांजी स्किन सेंसिटिव बि आहे, सेंसिटिव स्किन वारा माण्हू थोरो अवॉइड कंदा आहिनि क्रीमुनि खां, त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करे सघो था। ऐं बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका सिर्फ़ ॿ रातिनि में तव्हांखे सफ़ा भलो रिज़ल्ट ॾियण वारी आहे। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेके तव्हां सभु माण्हू लॻाए सघो था, मर्द मायूं सभु हणो बाबा, ॿिनि रातिनि में रिज़ल्ट मिले थो, आहे हाय मज़ो अची वेंदो। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे ऐं डी स्किन फेस वॉश आहे। डी स्किन फेस वॉश जे बारे में त तव्हांखे बिल्कुलु ख़बर आहे त बाबा हिन जे अंदरि हाइलुरोनिक एसिड सीरम एड थियल आहे जेको तव्हांजी स्किन खे मॉइस्चराइज़ कंदो आहे, क्लीन कंदो आहे ऐं डीपली हाइड्रेट बि रखंदो आहे। सो तव्हांजे लाइ तमामु इंतिहाई ख़ूबसूरत करण वारा प्रोडक्ट आहिनि जेके सफ़ा बाबा ही प्रीमियम क्वालिटी जा प्रोडक्ट अथव। तव्हां इस्तेमालु कंदा त तव्हांखे अमीरनि वारी फीलिंग अचणु स्टार्ट थी वेंदी। सो तव्हां बि चाहियो त बाबा तव्हां वटि अमीरनि वारा प्रोडक्ट हुजणु घुरिजनि, त तव्हां वटि डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश।

ओके जी, निदली कहती है हाय फेवरेट सॉन्ग, हैप्पी कहती है दिस इज माय फेवरेट सॉन्ग, वाह वाह वेरी नाइस थैंक यू। ओके जी, चाचा खालिद कहती आज शायद शाम वाला शो मिस हो जाए, गोइंग टू आउट साइड, कोशिश करूंगा। चलें आप कोशिश कीजिए, थैंक यू सो मच चाचा, आप इतनी परवाह करते हैं। और हिदायतुल्लाह कहते वैसे खूबसूरत तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। हाँ बिल्कुल सही था जो असा भी दी स्किन ब्यूटी क्रीम जता विधार आयो। मोहम्मद जमान कितने हुआ बाबा।

सोचो ना बाबा, सिर्फ रंग कारो थी वेंदन एक नहीं अची वेंदन ऐं चेहरे ते खोल सारा प्रॉब्लम्स अची वेंदन। छो त जॾहिं तव्हां कंहिंखां हसद कंदा आहियो, सड़ंदा आहियो, त पोइ तव्हांजी पंहिंजी स्किन ख़राब थी वेंदी आहे। सो खैर टेंशन न वठो बाबा, स्किन खे सफ़ा सही सही सुहिणो सुहिणो रखो ऐं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश जो इस्तेमालु कंदा रहो।

जी बिल्कुल प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से आप हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आपको वेलकम कहा जाता है और इसी के साथ साथ पोस्ट को लाइक और शेयर किया करें जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया और हमारे साथ हैं जी वरियाम अली क्या कहते हैं सदरा हम भी सुन रहे हैं आपका प्यारा शो एंड सलाम हो दिल से आपको वालेकुम असलाम हो आपको भी थैंक यू आप हमारे साथ

आवाज़ सही वाह, आवाज़ सही वाह, ॾाढो खूबसूरत गानो हुन सां गॾोगॾु। अच्छा, लुबना की शायरी पढ़ रहे थे। लुबना लिखती है कि एक तेरी याद जो सीने से लगा रखी है, हमने दुनिया में एक अलग दुनिया बसा रखी है, हमको मालूम नहीं चाहत के तकाजे, लेकिन तेरी बातों के सिवा हर बात भुला रखी है।

अच्छा पता नहीं क्यों ये गाना सुन रही थी तो मुझे दिया की याद आ गई. हाँ जी बहुत अच्छी लड़की ये माशाल्लाह. और चोरी चोरी हमारा शो भी सुनती है. अच्छा उन्हें खाना दर्दी दिल कहती है वेरी नाइस सॉन्ग थैंक यू. अच्छा वासु भाई बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं. निदली कहती लास्ट में कोई ओएसटी प्ले करना टाइम मिले तो जो हम दोनों का फेवरेट हो हम 5 बजे वाले प्रोग्राम में सुनेंगे ठीक है. और हैप्पी कहती है आज भाई शाम वाले प्रोग्राम में मिलते हैं. जी जी इंशाल्लाह. दर्दे दिल कहती है दिल कह रहा है चंदा बोलती जाए हम सुनते रहे बस. अल्लाह मत तेरे चारे छोड़ो तब कसम.

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना एंजॉय किया हमने। ये वाला गाना हमारे लिस्ट में मौजूद है, जो कि मैं सोच रही हूँ इस गाने को हम डेडिकेट करेंगे चाचा को। वैसे चाचा, आपने मास्टर मंजूर के गाने की फरमाइश कर दी थी, तो मैंने सोचा मास्टर मंजूर का गाना तो चल गया ना, तो ये वाला गाना आपको डेडिकेट कर देते हैं। इसी के साथ साथ आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या बात है जी। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, आप ऐसा वाला सीन बनता है कि बहुत से लोग कहते हैं भाई हम क्रीमें नहीं लगाते हैं। अगर आप क्रीमें नहीं लगाते हैं तो कोई मसले की बात नहीं, आपके पास डी स्किन फेस वॉश भी मौजूद है। फेस वॉश यूज कीजिए, अपना चेहरा अच्छे से क्लीन रखा करें और खूबसूरती ही खूबसूरती आपको मिलेगी जब आप डी स्किन का फेस वॉश यूज करने वाले हैं। तो डी स्किन फेस वॉश और साथ में आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी मिल रही है, दोनों चीजें इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेशक लगाइए, अगर आप कोई एक चीज लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश लगाइए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए।

मुजाहिद मरी के हमें सुन रहे हैं, मुजाहिद मरी कराची से आप हमारा शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपको, वेलकम कहा जाता है। और निदली कहती है क्या मस्त जिंदगी बर्बाद हो रही है, हाय हाय। मोहम्मद समान भाई कहते हैं सॉरी बुआ जी, बस मसरूफियात है। चलें कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप इजी होकर आराम से फ्री होकर हमारे प्रोग्राम में आ जाइएगा। सादिया थैंक यू सो मच, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया। हैप्पी आपका बहुत शुक्रिया, आपको प्रोग्राम पसंद आया। अच्छा मायरा भी हमारा शो सुन रही है, मायरा आपको भी वेलकम कहा जाए।

वाकई कुछ माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जंहिंजी नाराज़गी बि सुठी लॻंदी आहे. वैसे जंहिंखे दिलि सां मोहबत कई वञे, जंहिंखे दिलि सां चाह ॾिनो वञे, इतराम ॾिनो वञे, प्यार ॾिनो वञे, त उन जी नाराज़गी बि सुठी लॻंदी आहे. सो बिल्कुलु तव्हां हाँ जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं. अली कहते हैं, अली मुर्तजा कहते हैं कि चुड़ैलों को आना मना है, वे चुड़ैल कलाई थी. और लुबना कहती हाय क्या सॉन्ग प्ले किया, अच्छा लगा ना. बिल्कुल जी, आज मैंने थोड़ी सी अपनी मनमानी कर ली, मैंने आज अपनी पसंद के गाने लगा लिए हैं भाई. गाल तो वैसे थी, ॾिसो सभिनी की प्ले लिस्ट बणी आहे. तव्हां जा बि कुझु गाना हूंदा, पर तकरीबन मां कोशिशि कंदमि त तव्हांखे सुठी सुठी प्ले लिस्ट ॿुधाई वञे. सो बिल्कुल प्रोग्राम जो टाइम थियो आहे ख़तमु, तव्हां खां वठूं था इजाज़त. वरी मुलाक़ात तव्हां सां थिए पई मुंहिंजी 5 बजे वारे प्रोग्राम में. सो तव्हां जॉइन कंदा लाज़मी, ऐं पंहिंजो ओ हेॾो सारो ख़्यालु रखंदा. किथे का ग़लती थी हुजे त माज़रत कयूं था. कंहिंजो फीडबैक रहिजी वियो आहे, कंहिंजो गानो रहिजी वियो आहे, त सभिनी खां माज़रत कयूं. So, moklani nahi babu sin salamat sa salamat. Allah hafiz. Bye-bye. Love you all and take care.

0: It's 3 p.m.
1: हर अच्छे स्टू

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: ईरानी बंदरगाह की नाकाबंदी खत्म करण पाबंदन में नरमी जंगी नुकसान जो मुआवजो देण ईरान खिलाफ धमकियों बंद करण शामिल है। सफारतकारी अमेरिका के ईरान से मफाहमत से मजबूर कयो मायदे ते पहुंचण लाए हाने सुठो वक्त आए। ईरानी सदर मसूद पशकियान चयो इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त नामे तहत अमेरिका के आबना हुरमज बाबत ईरान ए उमान जी गडियल गाइडलाइंस से अमल करण घुर्जे। हा भंजकड़ी की सूरत में ईरान के पांजो रद्द अमल देणो पयो। दुश्मन जाने तो सिर्फ जंग से ईरान के हुक्म मनण से मजबूर नथो करे सके। दोहारी अमरीकी हुकूमत जो ईरान से अञा तई रवैयो तब्दील न थियो आहे।

ईरान में 40 ॾींहनि जी जंग दौरान 3,500 माण्हुनि जी शहादत जी तस्दीक। ईरान जे फॉरेंसिक मेडिसन ऑर्गेनाइजेशन जे सरबराह जो चवणु आहे त ताज़नि अमरीकी हमलनि में शहीद थियलनि जो अंग अञा धार आहे। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास राग़ची चयो त असां जे पंहिंजे शहीदनि जो रतु नज़रअंदाज़ न कंदासीं, कातिल खे माफ़ न कबो। सऊदीअ में आरामको ऑयल रिफाइनरी ते हमले जी ज़िमेवारी यमन जे हूसी ग्रुप क़बूले वरिती। हूसी ग्रुप जो चवणु आहे त सऊदी अरब जे शहर जाज़ान में आरामको रिफाइनरी खे ड्रोन हमले सां निशानो बणायो वियो। हमलो सहदा ऐं हजा सूबनि में फिज़ाई हदुनि जी भञकड़ियुनि जे जवाब में कयो वियो। मुल्क जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसाति जो इम्कान। अॼु पंजाब, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे मथां इलाइक़नि ऐं कश्मीर जे कुझु इलाइक़नि में बरसाति पइजी सघे थी। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर मुल्क जे वॾनि दरियाहनि में पाणी जे वहिकिरे में वाध जो इम्कान ज़ाहिर कयो। बारडन जी अगवा ऐं पाणीकोट ख़िलाफ़ मेहड़ में अवामी पोरे तहरीक जी इहतजाजी रैली। धरणो कारकुननि घंटाघर चौक ते पैदल मार्च करे धरणो हुयो। अॻवान जो चवणु हो त सिंधूअ ते किनार अॾण वारो फ़ैसिलो कंहिं बि सूरत में क़बूल न कयो वेंदो। सिंध में बारडन जी अगवा जे वधंदड़ वाक़नि जो नोटिस वरितो वञे। गढ़ी यासीन में आसिफ़ पठाण जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ शहर में शटरबंद हड़ताल, धरणो। शहरी समाज जे इतिहाद ऐं महिराण शॉपकीपर्स जे सर ते ॾखण नाके खां रैली कढी वई। मुज़ाहिरनि पारां अॻूणे SHO हिदायतुल्ला निंदवाणी ऐं ॿियनि ख़िलाफ़ सख़्तु नारेबाज़ी। इंडस हाईवे ते ओवरहेड साइन बोर्ड हादसनि जो सबबु बणियल। मंज़ूराबाद में रहवासियुनि जो धरणो। ॻोठाणनि इंडस हाईवे ते एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हणी रोड ब्लॉक करे छॾियो। ट्रैफ़िक मुअतल। रहवासियुनि जो चवणु हो त ओवरहेड साइन बोर्ड मौत जो राकास बणियल आहे। गाॾियुनि जे छितनि ते वेठल मुसाफ़िर फ़ौत थी वञनि था। 3 महीननि दौरान 3 मुसाफ़िर फ़ौत थी विया आहिनि।

0: तंगवाणी वेझो घर मां फुर खिलाफ़ ॻोठाणनि जो इंडस हाईवे ते धरणो। ॻोठ सादिक खोसो में घर मां चोरी खिलाफ़ लाशारी बिरादरी जे माण्हुनि इंडस हाईवे ते एहतजाजी मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई। चोरी थियल सामान वापसि कराइण जो मुतालबो। ॻढ़ी खैरो में वधंदड़ बदअमनी ख़िलाफ़ रहवासी सरापा एहतजाज बणिजी विया। सिंध बलोचिस्तान दंग ते धरणो। चोरी ऐं फुर जे वधंदड़ वारदातुनि ख़िलाफ़ शहर सहाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो। रहवासियुनि जो चवणो हो त सहाफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा जमालीअ खां फुर थियल मोटरसाइकिल समेत वारदातुनि जो नोटिस वरितो वञे। बदअमनी सबबु परेशान आहियूं, बदअमनी ते ज़ाब्तो आंदो वञे। घोटकी भरिसां गुज़िरियल ॾींहुं क़तल थियल ॿिनि भाइरनि जी तदफ़ीन पुलिस जूं चढ़ायूं। अशरफ ऐं शाबान घोटो जी जनाज़े नमाज़ घोट गुल मोहम्मद घोटो में अदा कई वई। हमले में ज़ख़्मी थियल ॿिनि भाइर ॿ भाइर सखर इस्पताल में इलाज हेठि। जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ पुलिस जे कचे जे मुख़्तलिफ़ ॻोठनि में ऑपरेशन। जवाबदार घर खाली करे फरार। ऐं खानपुर भरिसां ज़हरीलो खाधो खाइण सबबु फ़ौत थियल टिनि ॿारनि जी आलिन अखियुनि सां तदफ़ील। माहौल सोगवार बणियल। मदनी पाड़े में फौत थियल गुलजे मुस्कान ज़ैन कुरेशी जा मड़ खजण वक़्तु हर अख आली। फौती ॿारनि जी जनाज़े नमाज़ में सियासी समाजी अॻवाननि शहरनि वॾे अंग में शिरकत कई।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मैरापुर असां वटि जॻह जूं ॾियारियूं जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूदु आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
1: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सा तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: जदीद टेक्नोलॉजी सा तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो

तहरान जा छह मुतालबा तस्लीम थियण ताईं आबनाह हुर्मुज न खुलंदो। ईरान जे सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जे सेक्रेटरी जनरल बाकिर ज़ुल्कदर चयो आहे त मुतालबा तस्लीम न थियण ताईं पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइम आहियूं। मुतालबनि में ईरान जा ज़ब्त थियल असासा बहाल करणु, ईरानी बंदरगाहुनि जी नाकाबंदी ख़तमु करणु, पाबंदियुनि में नरमी, जंगी नुक़सान जो मुआवज़ो ॾियणु ऐं ईरान ख़िलाफ़ धमकियूं बंदि करणु शामिल आहे। सफारतकारी अमरीका खे ईरान सां मफ़ाहमत ते मजबूर कयो। मुआहिदे ते पहुचण लाइ हाणे सुठो वक़्तु आहे। ईरानी सदर मसूद पशकियान जो चवणु हो त इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त नामे तहत अमरीका खे आबनाह हुर्मुज़ बाबति ईरान ऐं ओमान जे गॾियल गाइडलाइंस ते अमल करणु घुरिजे। हा, भञकड़ी जी सूरत में ईरान खे पंहिंजो रद अमल ॾियणो पियो। दुश्मन ॼाणे थो त हू सिर्फ़ जंग सां ईराननि खे हुकुम मञण ते मजबूर नथो करे सघे।

0: पाकिस्तान खिते में अमुन ए तहफ़ुज़ जो ज़ामिन आहे। पेट्रोलियम वारे पाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक चयो त मका गडियल दिफ़ाई माहिदो पाकिस्तान लाइ फ़ख़्रु जहिड़ी ॻाल्हि आहे। पाकिस्तान जी हथियारबंद फ़ौज जी महारतुनि जी दुनिया शाहिद आहे। पाकिस्तान मुआशी मैदान में बि कामयाबी हासिलु कंदो। मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़न में बरसात जो इम्कान। अज पंजाब बलोचिस्तान गिलगित बल्तिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के मथान इलाक़न ए कश्मीर के कुछ इलाक़न में बरसात पैजी सके थी। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर मुल्क के वॾनि दरियाहनि में पाणी के वहकिरे में वाद जो इम्कान ज़ाहिर करे छॾियो। फैज़गंज में मुबैना तौर ज़हर ॾे क़त्ल कयल बख़्तावर शहर जे क़ातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ एहतजाज। औरत जे वारसनि शहरनि पकाचांग मुख्य चौक ते एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हुयो। संदनि चवणो हो त बख़्तावर खे संदसि मुड़ुसु उस्मान ॾेर मोहम्मद अली सहुरे क़त्ल कयो आहे। आई जी सिंध समेत अख़्तियार नोटिस वठी इंसाफ़ कनि। ॿारनि जी अॻवा ऐं पाणी खोट ख़िलाफ़ु मेहड़ में अवामी कोरे तहरीक जी एहतजाजी रैली धरणो। कारकुननि घंटा घर चौक ते पैदल मार्च करे धरणो हुयो। अॻवाण जो चवणो हो त सिंधूअ ते कैनाल अॾण वारो फ़ैसिलो कंहिं बि सूरत में क़बूल न कयो वेंदो। गढ़ी यासीन में आसिफ पठाण जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ शहर में शटरबंद हड़ताल धरणो। शहरी समाजी इतिहाद ऐं मेहरान शॉपकीपर्स जे सॾु ते ॾखण नाके खां रैली कढी वई। मुज़ाहिरनि पारां अॻूणे एस एच ओ हिदायतुल्ला निंदवाणी ऐं ॿियनि ख़िलाफ़ु सख़्तु नारेबाज़ी। आला अख़्तियारनि खां क़तल में मुलविस जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण जो मुतालबो। इंडस हाईवे ते ओवर हेड साइन बोर्ड हादसनि जो सबबु बणियल मंज़ूराबाद में रहवासियुनि जो धरणो। ॻोठाणनि इंडस हाईवे ते एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हणी रोड ब्लॉक करे छॾियो। ट्रैफिक मुअतल। रहवासियुनि जो चवणु आहे त ओवर हेड साइन बोर्ड मौत जो राकास बणियल आहिनि। टिनि महीननि दौरान टे मुसाफ़िर साइन बोर्ड सां टकराइजी हयातियूं विञाए चुका आहिनि। अख़्तियारियूं नोटिस वठनि।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
4: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे। सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385699।

0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
0: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
0: न अदा?
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
0: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
1: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
0: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
1: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836
2: आई मोहम्मद उमेर गोरी 03151557724।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Diya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
2: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी। माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राबते लाइ 0301-2196-851।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो।
3: वित्तीय जा रंग रौनकू जरखेजी असाजे हारी साईं ताहिन आबाद हाणे इन जो अन्याब वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे। सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिटीअ जो मान वधाए।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा। छो परेशान आई
4: अदा? नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
5: अदा? दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा?
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
7: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज जीए एफएम 94।

0: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाई
3: अल्लाह ताला इनको टाइम रखे इसको वसत नहीं है अल्लाह ताला पाकिस्तान को निशर रखी दे पाकिस्तान पाए है।

ईरान में 40 ॾींहनि जी जंग दौरान 3,500 माण्हुनि जी शहादत जी तस्दीक। ईरान जी फॉरेंसिक मेडिसन ऑर्गेनाइजेशन जे सरबराह जो चवणु आहे त ताज़न अमरीकी हमलनि में शहीद थियलनि जो अंग अञा धार आहे। ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो आहे त असां पंहिंजे शहीदनि जो रत नज़रअंदाज़ न कंदासीं, क़ातिल खे माफ़ न कबो।

सऊदी में आरामको आयल रिफाइनरी ते हमले की जिम्मेवारी यमन जे हूसी ग्रुप कबूल करे वरती। हूसी ग्रुप जो चवण है ता सऊदी अरब जे शहर जाजान में आरामको रिफाइनरी के ड्रोन हमले सां निशानो बनायो। हमलो सरदा ए हजा सुबन में फजाई हदन की भजकड़ियन के जवाब में कयो वियो। सिक्योरिटी फोर्सेस जो बलोचिस्तान में दहशतगर्द इंकलाब ऑपरेशन रतुल फितना 3 जारी। कार्रवाई में 15 खारजी मारजी विया। सिक्योरिटी सरियन मूजिब सिक्योरिटी फोर्सेस मस्तूम बोलान वाशिक आवारान सिपी खुजदार हरनाई ए नोशकी में कार्रवाई दौरान 15 दहशतगर्द मारजी विया। कब्जे में हथियार ए बारूदी मवाद भी हथ। सिक्योरिटी फोर्सेस पारां दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे ताईं ऑपरेशन रतुल फितना 3 तहत कार्रवाई बिना फर्क के जारी रखने जो अज़्म। घर वजीर मोहसिन नकवी पारां कामयाब कार्रवाई ते सिक्योरिटी फोर्सेस के भेटा पेश। मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे लाए दहशतगर्दी के पाणा पटण वाले अज़म जो इज़हार कयो। पाकिस्तान खत्ते में अमन ए तहफ़ुज़ जो ज़ामिन है। पेट्रोलियम वाले वजीर अली परवेज़ मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। परवेज़ मलिक मको गडियल दिफाई मुआहिदो पाकिस्तान लाए फ़ख्र है। पाकिस्तान के हथियारबंद फौज की भारत की दुनिया शाहिद है। पाकिस्तान माशी मैदान में भी कामयाबी हासिल करो। हुकूमत अवाम के पेट्रोलियम शेन में सब्सिडी दिनी। मीरपुर कस्बे में घर अंदर फायरिंग नारी सूतो बजना मारजी विया। करीम टाउन में घर अंदर फायरिंग सबब सवेरा लगारी फैजान राजपूत मारजी विया। नारी के भाव जो चवण है पुरुन घर में घिरी फायरिंग करे भेण के कत्ल कयो। एक जवाबदार पान के भी गोलियों हई। एक जवाबदार के कमरे में बंद कर छो है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाक में बरसात जो इम्कान। पंजाब बलोचिस्तान गिलगित बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के मथा इलाक में कश्मीर के कुछ इलाक में बरसात पैजी सके थी। नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर मुल्क के वन दरियान में पानी के वहकरे में वाद जो इम्कान जाहिर किया है। फैजगंज में मुबैना तौर जहर दई कत्ल कल बख्तावर शहर के कातल की गिरफ्तारी ला एहतजाज। औरत के वारिसन ए शहरियन पक्का चांग मुख चौक से एहतजाजी मुजाहरों कर धरणो है। सदन चवण है बख्तावर के संदस मुड़स उस्मान देर मोहम्मद अली सोहरे मोहकमद्दीन शहर जहर दई कत्ल किया है। आई जी सिंध समेत अख्तियारू नोटिस वी केस में नामजद मानून की गिरफ्तार कर इंसाफ दियन।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320-18-00-003
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद रابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 0300002724 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور 0301-3865453
0: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
0: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437202 0242460100

0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
0: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
0: न अदा?
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
0: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
1: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
0: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्थ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
1: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836।
2: आई मोहम्मद उमेर गोरी 03199155724।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट आईमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई
2: न अदा
4: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेहरापुर FM 94 ई हले थो मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेहरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे
2: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी
3: हा अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतिलब हर क़िस्म जी एडवरटाइज़िंग हलंदी आहे
2: अदा जल्दी कर मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो
4: ऑफिस जीअं मेहरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेहरापुर राबते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8347
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: हिन मिट्टी जा रंग रौनकू ऐं सरखेज़ असां जे हारिय साईं ताहिन आबाद हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।

मक्का गडि॒यल दिफ़ाई मुआहिदे जो मक़सदु कंहिं मुल्क ख़िलाफ़ कार्रवाई न पर क़ौमी सलामती जे चैलेंजेस खे मुंहुं डि॒यणु स्ट्रेटेजिक सहकार मज़बूत बणाइणु ख़िते में अमन इस्तेकाम ऐं खु़शहाली खे हथी वठाइण आहे. नायब वज़ीर आज़म ऐं परडे॒ही वज़ीर सागदार चयो आहे त पाकिस्तान ख़िते में अमन ऐं तरक़ी जो ख़्वाहिशमंद आहे. मक्का मुआहिदो मुकमल दिफ़ाई मुआहिदो आहे. कंहिं बि मुल्क ते हमिलो टिन्ही मुल्कनि ते हमिलो तसवुरु कयो वेंदो. सिक्योरिटी फोर्सेज जो बलोचिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन रतुल फितना 3 जारी. कार्रवाई में 15 ख़ारजी मारिजी विया. सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि सिक्योरिटी फोर्सेज पस्तून बोलान वाशिक अवरान सिबी खुज़ार हरनाई ऐं नौशकी में कार्रवाई दौरान 15 दहशतगर्द मारिजी विया. कब्ज़े मां हथियार ऐं बारूदी मवाद बि हथ. सिक्योरिटी फोर्सेज पारां दहशतगर्दीअ जे मुकमल ख़ात्मे ताईं ऑपरेशन रतुल फितना 3 तहत कार्रवाइयूं बिना फ़र्क़ जे जारी रखण जो अज़म. घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां कामयाब कार्रवाई ते सिक्योरिटी फोर्सेज खे भेटा पेश. मुल्क में दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ दहशतगर्दी खे पाणा पटण वारे अज़म जो बि इज़हार. तेहरान जा 6 मुतालबा तस्लीम थियण ताईं अपना हुर्मुस न खुलंदो. ईरान जी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जी सेक्रेटरी जनरल वाकर ज़ुल्कदर चयो आहे त मुतालबा तस्लीम न थियण ताईं पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइमु आहियूं. मुतालबनि में ईरान जा ज़ब्त थियल असासा बहाल करणु, ईरानी बंदरगाहनि जी नाकाबंदी ख़तमु करणु, पाबंदियुनि में नरमी, जंगी नुक़सान जो मुआवज़ो ॾियणु ऐं ईरान ख़िलाफ़ धमकियूं बंदि करणु शामिल आहे. सिफारतकारी अमरीका खे ईरान सां मुफ़ाहमत ते मजबूर कयो. मुआहिदे ते पहुचण लाइ हाणे सुठो वक़्तु आहे. ईरानी सदर जे तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस. मसूद पिसिकियान चयो त इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश नामे तहत अमरीका खे आबना हरमुस बाबति ईरान ऐं उमान जी गडि॒यल गाइडलाइंस ते अमल करणु घुर्जे. भजकड़ीअ जी सूरत में ईरान खे पंहिंजो रदि अमल ॾियणो पियो. दुश्मन ॼाणे थो त हू सिर्फ़ जंग सां ईरानियुनि खे हुकुम मञण ते मजबूर नथो करे सघे. ॾोहारी अमरीकी हुकूमत जो ईरान सां अञा ताईं रवैयो तब्दील न थियो आहे. ईरान बि तयारु आहे.

ईरान में 40 ॾींहनि जी जंग दौरान साढा 3,000 माण्हुनि जी शहादत जी तस्दीक। ईरान जे फॉरेंसिक मेडिसन ऑर्गेनाइजेशन जे सरबराह जो चवण आहे त ताज़नि अमरीकी हमलनि में शहीद थियलनि जो अंग अञा धार आहे। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास राख़्शी चयो आहे त असां जे पंहिंजे शहीदनि जो रत नज़रअंदाज़ न कंदासीं, क़ातिल खे माफ़ न कबो।

0: सऊदी में अरामको ऑयल रिफाइनरी ते हमले जी जिम्मेवार यमन जी हुसी ग्रुप कबूल कर वरती। हुसी ग्रुप जो चवणा है त सऊदी अरब के शहर जाज़ान में अरामको रिफाइनरी के ड्रोन हमले से निशानो बणायो। हमलो सहदा ए हजा सूबन में फजाई हदन की भजकड़ियन के जवाब में कयो वियो। मीरपुर खास में घर अंदर फायरिंग, नारी ए नौजवान मारजी व्या। फायरिंग में नारी की अमड़ भी जख्मी। करीम टाउन में घर अंदर फायरिंग सबब 24 वरियन के सर सवेरा लगारी ए फैजान राजपूत मारजी व्या। नारी के भाव जो चवण है त जवाबदार घर में घिड़ी न्याणियों से फायरिंग कई। एक जवाबदार फैजान पान के गोलू हणी पैंजो अंटाने छो। बो जवाबदार घर में बंद कर छो है। पुलिस मूजिब जै घर में वाक्य पेश आयो है उत घर भातियन दरवाजा बंद कर छाया।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई।
2: हाँ ये चो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जै में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाए 03201800003।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
1: न अदा?
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्थ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
3: 0301-399-2836।
0: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1558-724।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने, मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
3: अल्लाह एहसास करार वफाकी काबिना जे मेंबर्स चू गडियल मक्का दिफाई मायदे ते गालियो अल्लाह ताला चयो त पाकिस्तान के दुनिया में यो दर्जो मिलियो जको हु चाहन पिया मक्के जी मुकद्दस जमीन ते तारीखी मायदो पाकिस्तान लाए एहसास आहे राणा सनावला चयो आहे त मायदे सां इस्लामी मुल्कन जी तरक्की खुशहाली जो नओ दौर शुरू थींदो फैसलाकारी मूजिब टिन्ही मुल्कन खिलाफ़ केर बि जहराणो कदम खणण जी जुरत न करे सघंदो एहसान इक़बाल चयो त टिन्ही मुल्कन जो हिक ॿिए सां गॾु बीहण फ़ख्र जी ॻाल्हि आहे शिज़ा फातिमा क़ौम खे वाधायूं ॾींदे चयो माहिदे सां पाकिस्तान जो वक़ार सॼी दुनिया में बुलंद थियो आहे तारिक फज़ल ऐं तलाल चौधरी मूजिब ही मामिलो मुस्लिम दुनिया जे इतिहाद लाइ उमीद जी नई सुबुह आहे मौलाना ताहिर शफ़ी मक्का गडि॒यल माहिदे खे मुस्लिम दुनिया जी बहितर सलामती इस्तेकाम लाइ वक़्त जी ज़रूरत करार ॾिनो परवेज मलिक चयो त मक्का गडि॒यल दिफ़ाई माहिदो पाकिस्तान लाइ फ़ख्र आहे पाकिस्तान जे हथियारबंद फ़ौज जी महारतनि जी दुनिया शाहिद आहे मक्का गडि॒यल दिफ़ाई माहिदे जो मक़सदु कंहिं मुल्क ख़िलाफ़ कार्रवाई न पर क़ौमी सलामती जे चैलेंजेस खे मुंहुं ॾियण स्ट्रेटेजिक सहकार मज़बूत पाइण खिते में अमन इस्तेकाम ऐं खु़शहाली खे हथी वठाइण आहे नायब वज़ीर-ए-आज़म ऐं परडे॒ही वज़ीर साकदार चयो आहे त पाकिस्तान खिते में अमन ऐं तरक़ी जो ख़्वाहिशमंद आहे मक्का मुआहिदो मुकमल दिफ़ाई मुआहिदो आहे कंहिं बि मुल्क ते हमिलो टिन्ही मुल्कनि ते हमिलो तसवुरु कयो वेंदो सिक्योरिटी फोर्सेज जो बलोचिस्तान में दहशतगर्द खिलाफ़ ऑपरेशन रतुल फितना 3 जारी कार्रवाई में 15 खारजी मारिजी विया सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि सिक्योरिटी फोर्सेज मस्तूम गोलान वाशिक आवरान सिपी हुज़दार हरनाई ऐं नौशकी में कार्रवाईअनि दौरान 15 दहशतगर्द मारिजी विया कब्ज़े मां हथियार ऐं बारूदी मवाद बिहत सिक्योरिटी फोर्सेज पारां दहशतगर्दी जे मुकमल ख़ात्मे ताईं ऑपरेशन रतुल फितना 3 तहत कार्रवाईयूं बिना फ़र्क़ जे जाइज़ खणजो अज़म कर वज़ीर मोहसिन नकवी पारां कामयाब कार्रवाई ते सिक्योरिटी फोर्सेज खे भेटा पेश मुल्क में दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ दहशतगर्दी खे पाणा पटण वारे अज़म जो इज़हार कयो अमरीकी नायब सदर जी ईरान सां ॻाल्हियुनि में अकबराई जी दावा पेंटागोन दिफ़ाई कंपनियुनि खे हथियारनि जी पैदावार वधाइण जो बि हुकुम ॾेई छॾियो वॉशिंगटन पोस्ट मूजिबि ट्रंप इंतज़ामिया दिफ़ाई कंपनियुनि खे चयो अहिड़ो मनसूबो ठाहियो जंहिंमें 21 ॾींहनि दौरान हथियारनि जी पैदावार में तमामु घणो इज़ाफ़ो करे सघिजे जेडीवेल चयो त छिकताण अञा मुकमल तौरु ख़तम न थी आहे अमरीका सिफारती माशी ऐं फ़ौजी ज़रिया इस्तेमालु करे रहियो आहे

अडाई वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो आहे त ॻाल्हियूं कराईंदड़नि तरफ़ां पैगामनि जी ॾे वठि जो सिलसिलो जारी आहे। हिन खे ॻाल्हियूं नथो चई सघिजे। अपना हुर्मुस जे मौजूदा सूरतहाल अमरीका पारां मफ़ामती यादाश्त नामनि जी भजकड़ी जो नतीजो आहे। अपना हुर्मुस जे आरसी रस्ते लाइ उमान सां माहिदे जे वेझो पहुची चुका आहियूं। तेहरान जा छह मुतालबा तस्लीम थियण ताईं अपना हुर्मुस न खुलंदो। ईरान जे सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जे सिक्योरिटी जनरल बाकर ज़ुल्क़दर चयो आहे त मुतालबा तस्लीम न थियण ताईं पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइम आहियूं। मुतालबनि में ईरान जा ज़ब्त थियल असासा बहाल करणु, ईरानी बंदरगाहनि जी नाकाबंदी ख़तमु करणु, पाबंदियुनि में नरमी, जंगी नुक़सान जो मुआवज़ो ॾियणु ऐं ईरान ख़िलाफ़ धमकियूं बंदि करणु शामिल आहे। सिफारतकारी अमरीका खे ईरान सां मुफ़ामत ते मजबूर कयो। माहिदे ते पहुचण लाइ हाणे सुठो वक़्तु आहे। ईरानी सदर जे तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मसूद पेशकियान चयो त इस्लामाबाद मुफ़ामत यादाश्तनामे तहत अमरीका खे अपनाए हुर्मुस बाबति ईरान ऐं उमान जी गॾियल गाइडलाइंस ते अमल करणु घुर्जे। हा, भजगड़ी जी सूरत में ईरान खे पंहिंजो रदि अमल ॾियणो पियो। दुश्मन ॼाणे थो त हू सिर्फ़ जंग सां ईरानियुनि खे हुकुम मञण ते मजबूर नथो करे सघे। दुहारी अमरीकी हुकूमत जो ईरान सां अञा ताईं रवैयो तब्दील न थियो आहे। ईरान बि तयारु आहे। ईरान में 40 ॾींहनि जी जंग दौरान 3500 माण्हुनि जी शहादत जी तस्दीक। ईरान जी फॉरेंसिक मेडिसन ऑर्गेनाइजेशन जे सरबराह जो चवणु आहे त ताज़नि अमरीकी हमलनि में शहीद थियलनि जो अंग अञा धार आहे। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो आहे त असां पंहिंजे शहीदनि जो रतु नज़रअंदाज़ न कंदासीं। क़ातिल खे माफ़ न कबो।

0: नीपू खास में घर अंदर फायरिंग सबब नारी ए नौजवान मारजी वा। करीम टाउन में घर अंदर फायरिंग सबब चौवी वरियन की सवेरा लकारी ए फैजान पठान मारजी वा। फायरिंग में मकतूल नारी की अमड़ भी जख्मी। नारी के भाव जो चवण है बिन जणन घर में दाखिल थी सवेरा की गोलियो हुई। फैजान पान के गोली हणी आपकात कर छो। वाक्य बाद मारजी वल के भाव भी घर में घिड़ी असा के मारने की कोशिश कई। जवाबदार गिरफ्तार किया वन। हैदराबाद में सिंधु दरिया में बुडी वेल टिन नींगरन जो पतो न पयो। वारिसन पारा सुपर हाईवे ते एहतजाज। एहतजाज सबब कराची का हैदराबाद जहां ईंदड़ वेंदड़ ट्रैफिक मुअत्तल। वारिसन चयो त असांजा नींगर गुज़िरियल ॾींहं दरिया में बुडी विया पर ज़िलाई आफिसरन समेत लागापियल इंतज़ामिया ॻोल्हण में मदद करण लाइ तयारु ई नाहे। गुज़िरियल ॾींहं हुसैनाबाद वटां ग़ुलाम रसूल चांडियो, फिरोज़ चांडियो ऐं शिराज चांडियो सिंधु दरिया में वेंझंदे बुडी विया हुआ।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00-003
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-335-69
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
5: यार आज कल शरण तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मजे दुकान जी बेड हलंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836
5: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-15-5-724
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो, इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राबते जे लाइ 03201800003।

0: सुठा रंग रौनकूं ऐं सिरखेज़ असां जे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयारु कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिटीअ जो मान वधाए
1: खुशख़बरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूरु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर खां शाम पंजे वॻे ताईं मरींदा आहिनि हर जुमे चेकअप यादि रखंदा मस्टोर तां वठणी पवंदी माहिर अमराज़ नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो

सिंध राउंड अप में अॼु अव्हां ॿुधी सघंदा। चीन पारां सिंध खे लेडी हेल्थ वर्करनि जे लाइ 2000 घर ठाहे ॾियण जो फ़ैसिलो। सिंध जो 114 साल पुराणो रेवन्यू कानून तब्दील। मेराण हाईवे ते टूल टैक्स लागू। निसार खेड़ो ऐं रेवन्यू आफ़िसरनि मथां मिल्कियत जे सर में फेरफार जा इल्ज़ाम। जांच जो हुकुम। तालीम खाते पारां सरकारी स्कूलनि जो नओं टाइम टेबल मुक़ररु। सुबुह 8 खां 2:30 बजे मंझंदि ताईं स्कूल खुलियल रहंदा। पुरन जे रूहानी पेशवा पीर साहब पागार चूंड कौमी नौजवान सां मुबैना ज़्यादती कंदड़ पंजनि जवाबदारनि जा हथ बंदि करे छॾिया। स्पेशल रिपोर्ट में अव्हां ॿुधी सघंदा। सिंध, कराची ऐं नवनि सूबनि जो सवाल। सिंध जो 114 साल पुराणो रेवन्यू कानून तब्दील। एराज़ीअ जो तयन मार्केट अघनि सां लाज़मी करार। 5 लख टन परॾेही कणिक ख़रीदारीअ जी मंज़ूरी। मेराण हाईवे ते टूल टैक्स लागू। उन ॾस में वज़ीर आला सिंध सैद मुराद अली शाह जे सदारत में थियल काबीना इजलास में सिंध गवर्नमेंट लैंड्स मैनेजमेंट बिल 2026 ते गौर वीचार कयो, जंहिंजो मक़सदु सदी पुराणो कॉलोनाइज़ेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स एक्ट 1912 खे सूबे में सरकारी ज़मीन जे इंतज़ाम, अलाइनमेंट ऐं इस्तेमाल जे लाइ जदीद ऐं शफ़ाफ़ क़ानूनी फ्रेमवर्क सां तब्दील करणु आहे। तजवीज़ कयल क़ानून साज़ी मार्केट ते ॿधल वैल्यूएशन, शफ़ाफ़ अवामी नीलामी जो तरीक़ो, अलाटमेंट लाइ वाज़े क़ाबिलियत जा मयार, सख़्त इंतज़ामी शिकूं ऐं शिकायतुनि जे अज़ाले जो हिकु मौसर निज़ाम मुतारिफ़ कराए ज़मीनुनि जे गवर्नेंस में वॾे अरसे खां ईंदड़ मसइलनि खे हल करणु चाहे थी। नओं फ्रेमवर्क ज़रई ज़मीन सां गॾु सनअती, रिहाइशी, वापारी, अवामी मक़सदनि ऐं एम्यूनिटी मनसूबनि जी ज़रूरतुनि खे बि पूरो कंदो। काबीना नवाब शाह राणीपुर मेराण हाईवे जे 35 किलोमीटर रोड ते टूल टैक्स लागू करण जी मंज़ूरी ॾिनी। इजलास खे ॿुधायो वियो त हीउ हाईवे शहीद बनजराबाद, नौशहरो फिरोज ऐं शेरपुर ज़िलनि खे पाण में मिलाए थी। 41 अरब रुपियनि जी लागत सां रोड खे डबल कयो पियो वञे। उन ई रोड ते रोज़ानो 22,000 खां वधीक गाॾियूं गुज़रनि थियूं। तजवीज़ कयल टूलिंग सिस्टम मां लॻभॻि 2.14 अरब रुपया सालियानी आमदनी थियण जो इम्कान आहे। काबीना सूबे जे खुराक जी ज़रूरतुनि खे पूरो करण जे लाइ ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ज़रिए 5 लख टन कणक दरामद करण जी बि मंज़ूरी ॾिनी। काबीना खे ॿुधायो वियो त सिंध में कणक जी कुल दस्तियाबी 4.84 ऐं सालियानी घुर्ज 6.53 मिलियन टन आहे। लॻभॻि 1.69 मिलियन टन खोट जो इम्कान आहे। गौर वीचार खां पोइ काबीना वफ़ाक़ी हुकूमत पारां कोआर्डिनेट कयल फ्रेमवर्क तहत TCP ज़रिए 5 लख टन कणक जी दरामद जी मंज़ूरी ॾिनी। काबीना एक्साइज़ खाते जे गाॾियुनि जी रजिस्ट्रेशन, टैक्स ऐं इंश्योरेंस निज़ाम में सुधारनि जूं तजवीज़ूं मंज़ूरु करे वरितियूं। ऑफ बोर्ड ऐं तबाह थियल गाॾियुनि जी डी रजिस्ट्रेशन पॉलिसीअ जी मंज़ूरी। इस्तेमाल न थियण जोगियो या सिस्टम मां ख़ारिज थियल गाॾियुनि जा मालिक 30 सेप्टेम्बर ताईं लिखत में पधराई जमा कराइण जा पाबंद हूंदा। जुलाई 2010 खां टैक्स अदा न करण ऐं पधराई जमा न कराइण वारनि गाॾियुनि खे ऑफ रोड तसवर कयो वेंदो। रहतूं अदा न करण सबबि 60 ॾींहनि बाद गाॾियुनि जी रजिस्ट्रेशन रद्द कई वेंदी। गाॾियुनि जी रजिस्ट्रेशन निज़ाम खे वधीक शफ़ाफ़ ऐं सराइतो बनाइण जी बि मंज़ूरी। मोटर डीलर्स वटि रखण जो मुदो 12 महीननि खां वधीक न हूंदो। चीन पारां सिंध खे लेडी हेल्थ वर्करनि जे लाइ 2000 घर ठाहे ॾियण जो फ़ैसिलो। सिहत वारे वफ़ाक़ी वज़ारत पारां ट्रांसपोर्ट ऐं मरमती ख़र्च खणण जे सूरत में घरनि जो अंग वधाए 40-19 करण जी आछ। उन ॾस में सिहत वारे वफ़ाक़ी वज़ारत चीन तरफ़ां बोर मुतासिरनि जी बहालीअ जे लाइ ॾिनल ग्रांट मां लेडी हेल्थ वर्करनि लाइ प्री फेब्रिकेटेड घरनि जी तामीर वारे मनसूबे जो जाइज़ो वरितो आहे। रिथा मूजिबि शुरूआती तौर 3000 घर तामीर कया वेंदा। जेकॾहिं वफ़ाक़ी वज़ारत ऐं सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट ऐं अॾावती ख़र्च बर्दाश्त कया त उन्हनि घरनि जो अंगु वधी 6000 ताईं पहुची सघे थो। सिंध सूबे खे 4019 घर मिलण जो इम्कान आहे। दस्तावेज़ मूजिबि चीनी ग्रांट जे मजमूई रक़म 800 मिलियन RMB आहे, जंहिं मां 300 मिलियन 11.80 अरब रुपया RMB लेडी हेल्थ वर्करनि लाइ घरनि जे तामीर लाइ मुख़्तस कई वई आहे। चीनी वफ़द तजवीज़ ॾिनी आहे त हू प्री फेब्रिकेटेड घरनि में 2 कमरा हूंदा, जिन मां 1 कमरो क्लिनिक या तिबी ख़िदमतुनि लाइ ऐं ॿियो रिहाइश लाइ मखसूस हूंदो। हर घर जी वेकर 3 मीटर, ड्रेग 8 मीटर ऐं ऊचाई 2.6 मीटर हूंदी।
पुल तामीर थियल एराधी 24 चौरस मीटर हूंदी। घर में बिजली जी अंदरूनी वायरिंग, रोशनी, भित ते लगल पखो, बरकी साकट, प्लम्बिंग, जरूरी फर्नीचर, सोलर पावर सिस्टम, वाटर पंप, पानी की टांकी समेत बुनियादी सहूलतू फराहम कई वेंदी। उन्हें घर की उम्र 20 साल बुधाई वही है। इजलास के बुधा वो 300 मिलियन RMB के बजट में 3000 घर तामीर थींदा। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल वजीर आजम के हिदायत से मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट 2026 मुलतवी कर छी। 15 में चयो वियो आहे ते MD किट की टेस्ट हाँ 16 अगस्त बदरा 20 सितंबर 2026 ते थींदी। तारीख तब्दील करण जो फैसलो इम्तिहान के वधीक मुनज़्ज़म, महफूज, शफाफ ए उम्मीदवारन जे लाए आसान बनाने जो मकसद सां कयो वियो आहे। इम्तिहान की तारीख का पो ब्या समूरा शर्त ए ज़ाब्ता बरकरार रहंदा। लाड़काने में एंटी करप्शन की खास अदालत पारा PP सिंध के सदर निसार करो समेत बेन खिलाफ मिल्कियत के रिकॉर्ड में मुबैना फेरफार बाबत जांच जो हुकुम। 6 हफ्तन अंदर जांच रिपोर्ट तलब। उन सिलसिले में मिलल जान मूजिब लाड़काने के एंटी करप्शन की खास अदालत अगूणे तालके नाजम कुर्बान अली अब्बासी तरफा दाखिल दरख्वास्त बुधनी कई। अदालत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार करो समेत बेन खिलाफ मिल्कियतों के सरकारी रिकॉर्ड में मुबैना फेरफार ए अख्तियार नाजायज इस्तेमाल बाबत इल्जाम से शुरुआती जांच जो हुक्म जारी कर छोड़ो। अदालत एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट रीजनल डायरेक्टर के हिदायत कई है तो 6 हफ्तन अंदर जांच मुकम्मल कर रिपोर्ट पेश कई वे। दरख्वास्त गुजार कुर्बान अली अब्बासी मौकफ इख्तियार किया है तो निसार खोड़ो की हिदायत से अगूणे एडिशनल कमिश्नर, अगूण असिस्टेंट कमिश्नर, अगूणे मुख्तियारकार बेन लागापियल आफिसरन मुबैना तौर मिल्कियत के सरकारी रिकॉर्ड में फेरफार कर गैर कानूनी कदम खया। दरख्वास्त में इस्तदा कई वही है त सिंध हाई कोर्ट पारा रिकॉर्ड में मुबैना फेरफार रोकण बाबत जारी कल हुकुमन से अमल दरामद के यकीनी बनाया वे। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट मुबैना तौर रिकॉर्ड में फेरफार कर जिम्मेवार मानून खिलाफ कानून मूजिब कार्रवाई कर अदालत पांजे हुकुम में ही करार दिनो है त इल्जाम की हकीकत मालूम करने के लिए मुकम्मल जांच जरूरी है जैखा पोई वधीक कार्रवाई बाबत फैसलो किया वो। तालीम खाते सिंध सरकारी स्कूलों जो नव टाइम टेबल मुकर्र कर छोड़ो है। जारी कर सर्कुलर मूजिब 6 अगस्त का 31 अगस्त तीन प्राइमरी स्कूल सूमर का खमीस तीन सुबह 8 to 2:30 तीन खुलल रहंदा, जडे सिंगल शिफ्ट प्राइमरी स्कूल जुमे दी सुबह जो 8 to 1 तीन खुलल रहंदा, जडे 1 नवंबर का 31 मार्च तीन सिंगल शिफ्ट प्राइमरी स्कूल सुबह 8:30 to 10:30 तीन हलंदा। अड़ी तरह प्राइमरी डबल शिफ्ट स्कूलन जो भी शेड्यूल जारी किया वो है। सर्कुलर मूजिब त डबल शिफ्ट एलिमेंट्री, सेकेंडरी ए हायर सेकेंडरी स्कूलन की पहरी शिफ्ट 6 अगस्त का 31 अगस्त तीन सुबह 7:30 का मंझंद 1:30 तीन हलई वेंदी, जडे तो 1 नवंबर का 31 मार्च तीन डबल शिफ्ट एलिमेंट्री ए हायर सेकेंडरी सुबह की शिफ्ट 8 to 1:30 तीन होंदी। चूंडकोमी नौजवान आशिक चांडो सा मुबैना ज्यादती, तशद्दुद ए वीडियो वायरल करण वाले मामले बाद पीर साहब पागारे वाकई जो नोटिस वठंदे इल्जाम हेठ आयल नियाज आरादी, इम्तियाज आरादी, अली नवाज आरादी, मीर हसन आरादी ए गुलाम मुर्तज़ा आरादी जो हथ बंद कर छोड़ो। पुलिस नामजद जवाबदार की गिरफ्तारी के लिए वही नफरी से छापा हणी मुख्तलिफ हंधन से कार्रवाई क्यों, जडे तो जवाबदार के भा अली गुलाब आराई हाई हाजन आरादी समेत 5 से सरकार पारा ड्यूटी अटका पुलिस मथा हमले जो केस दाखिल किया वो है। होॾां फरियादी अज़ीम चांडियो इंसाफ़ जो मुतालबो कंदे चयो आहे त वाकई में मुलविस जवाबदार ख़िलाफ़ सख़्त कानूनी कार्रवाई कई वञे। ॿिए तरफ़ नामज़द जवाबदार नियाज़ आरादी क़ुरान पाक हथ में खणी पंहिंजी बेगुनाही जो इज़हार कंदे सभई इल्ज़ाम रद्द करे छॾिया आहिनि। SHO सोरा यासिर खोसो राब्ते ते ॿुधायो त जवाबदार ख़िलाफ़ कार्रवाई करे रहिया आहियूं, रियायत न थींदी।

पेशा है स्पेशल रिपोर्ट। सिंधु रुगो पाकिस्तान के नक्शे से एक सूबो न पर पांजे हजारे सालन की तारीख सकाफत बोली जाग्राफी ए तहजीबी सुणप रखड़ एक तारीखी वहदत है। पाकिस्तान के क़याम की तारीख में सिंध जो किरदार भी बुनियादी अहमियत रखे तो। 1940 के करारदाद का वठी पाकिस्तान के क़याम तई सिंध के सियासी क्यादत अवाम पांजे मखसूस तारीखी हैसियत से पाकिस्तान के तहरीक में हिस्सो रहा। अज जदें मुल्क में नवन सूबन के क़याम जो बहस बीहर जोर वठी रो है तदें वो सवाल सिर्फ इंतजामी विरासत तई महदूद न तो रहे। सिंध की अवाम लाए वो सवाल पांजी तारीखी वहदत वसीलन जाग्राफी मुस्तकबिल सां गंढियल है। तें करे अड़ी कें भी तजवीज़ ते जज्बात बदरां तारीखी हकीकतुन आइनी उसूलन अवामी रजामंदी के बुनियाद ते गौर थियण घुर्जे। बदकिस्मत असा सिंध में एक अरसे का वो एहसास वधी रो है तो सिंध के वसीलन जमीनुन पानी सामुंडी पट्टी ए खास तौर कराची बाबत फैसला सिंध की अवाम की ख्वाहिश के नजरअंदाज कर वन था। जैसे कें सूबे की अवाम में मुसलसल उहो एहसास पैदा थे तो संदन आवाज़ नथो बुधो वे तो उ सूरत हाल कें भी वफाक लाए फायदेमंद नथी थी सके। कराची इन बहस जो सब का अहम नुक्तो है। कराची सिर्फ एक मुआशी शहर न पर सिंध के तारीखी जाग्राफियाई वजूद जो हिस्सो है। सागे वक्त कराची मुख्तलिफ़ कौमुन बोलियन सकाफतुन से ताल्लुक रखड़ लखे मानुन जो शहर पिणु है। सिंधी उर्दू गलाइंदड़ बलोच पख्तून पंजाबी बियन बिरादरीन कराची की तामीर और तरक्की मीपा जो किरदार अदा किया है। तें करे कराची के कें एक लासानी ग्रोह के मिल्कियत करार दियण तारीखी समाजी हकीकतुन के महदूद करण बराबर होंद। उ हकीकत है तो सिंध के बिन वन शहर में मुख्तलिफ़ बिरादरी जहा मू गा वक्त से गड शहरी आबादी वधी है। नव आबादी वजूद में आयु मुख्तलिफ़ बोलियों ऐलड़ मू एक बे में जजब पिण थे। दुनिया के बिन शहर वागुर कराची में भी शहरी आबादी की तब्दीली एक फितरी अमल है। उन तब्दीली के लासानी खौफ या सियासी तकरार के सबब बनाने बदरा हकीकत पसंद अंदाज से समझण की जरूरत है। सागे वक्त सिंध के सियासी समाजी क्यादत की जिम्मेवारी भी तमाम वही है। रुगो एहतजाज या बयानबाजी काफ़ी ना है। सिंध के मुख्तलिफ़ सियासी समाजी दानश्वर कॉम्प्रस धुरन के इख्तलाफन का मथाउ थी एक वाजे जमूरी पुरमन हिकमत अमली जोड़ घुर्जे। बे तरफ उर्दू गालाइंदड़ सिंधियों समेत कराची के समूरन बिरादरन के भी वो समझण घुर्जे तो सिंध की वहदत कें एक बिरादरी खिलाफ़ मनसूबो ना है। सिंधी तारीख मुस्तकबिल में हर उन शहरी जो हिस्सो है जो इन धरती के पांजो घर समझे तो। अज जरूरत उन गाल जी आए तो सिंध बाबत थींदड़ हर फैसले में सिंध की अवाम की राय आइनी हकन तारीखी हैसियतुन के नजर में रखियो वे। नवन सूबन जो सवाल हुए या कराची जो मुस्तकबिल अड़ा फैसला कें बंद कमरे में न पर अवामी रजामंदी आइनी अमल जमूरी उसूलन तहत थियण घुर्जन।

0: जो हिन वक्त जो सिंध राउंड अप बे आचर जे सिंध राउंड अप तई गुलाब खान भेण के दिना इजाजत अल्लाह निगहबान।
1: It's 8:15 p.m.
2: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli glow har din jo show. A product by Biocon International Pakistan.

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घटण शुगर ब्लड जा मर्ज फालिज खंघड़े जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196 जा
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेसिंग मशीन कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी अरणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तो मेरा एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ जिसके मिनरल्स स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निक के साथ व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन का राज अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा चौक सीमेंट रेती क्रेश रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आहिन
1: हाँ यो महिरा

0: आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
1: राब्ते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगी 00320437202 आई 02420100
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा भी फोरी हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
2: अदा जल उनजी एड्रेस
0: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो 94

सिंध राउंडअप में अॼु अव्हां ॿुधी सघंदा। चीन पारां सिंध खे लेडी हेल्थ वर्करनि जे लाइ 2000 घर ठाहे ॾियण जो फ़ैसिलो। सिंध जो 114 साल पुराणो रेवेन्यू कानून तब्दील। मेराण हाईवे ते टूल टैक्स लागू। निसार खेड़ो ऐं रेवेन्यू ऑफिसरनि मथां मिल्कियत जे सरकारी रिकॉर्ड में फेरफार जा इल्ज़ाम। जांच जो हुकुम। तालीम खाते पारां सरकारी स्कूलनि जो नओं टाइम टेबल मुक़ररु। सुबुह 8 खां 2:30 बजे मंझंदि ताईं स्कूल खुलियल रहंदा। पुरनि जे रूहानी पेशवा पीर साहब पागार चूंड क़ौमी नौजवान सां मुबैना ज़्याती कंदड़ पंजनि जवाबदारनि जा हथ बंदि करे छॾिया। स्पेशल रिपोर्ट में अव्हां ॿुधी सघंदा। सिंध, कराची ऐं नवनि सूबनि जो सवाल। सिंध जो 114 साल पुराणो रेवेन्यू कानून तब्दील। एराज़ीअ जो तईं मार्केट अघनि सां लाज़मी करार। 5 लख टन परॾेही कणिक ख़रीदारीअ जी मंज़ूरी। मेराण हाईवे ते टूल टैक्स लागू। उन ॾिस में वज़ीर आला सिंध सैद मुराद अली शाह जे सदारत में थियल काबीना इजलास में सिंध गवर्नमेंट लैंड्स मैनेजमेंट बिल 2026 ते गौर वीचार कयो, जंहिंजो मक़सदु सदी पुराणो कॉलोनाइज़ेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स एक्ट 1912 खे सूबे में सरकारी ज़मीन जे इंतज़ाम, अलाइनमेंट ऐं इस्तेमाल जे लाइ जदीद ऐं शफ़ाफ़ कानूनी फ्रेमवर्क सां तब्दील करणु आहे। तजवीज़ कयल कानून साज़ी मार्केट ते ॿधल वैल्यूएशन, शफ़ाफ़ अवामी नीलामी जो तरीक़ो, अलाटमेंट लाइ वाज़े क़ाबिलियत जा मयार, सख़्त इंतज़ामी शिकूं ऐं शिकायतुनि जे अज़ाले जो हिकु मौसर निज़ाम मुतारिफ़ कराए ज़मीनुनि जे गवर्नेंस में वॾे अरसे खां ईंदड़ मसइलनि खे हल करणु चाहे थी। नओं फ्रेमवर्क ज़रई ज़मीन सां गॾु सनअती, रिहाइशी, वापारी, अवामी मक़सदनि ऐं एम्यूनिटी मनसूबनि जी ज़रूरतुनि खे बि पूरो कंदो। काबीना नवाब शाह राणीपुर मेराण हाईवे जे 35 किलोमीटर रोड ते टूल टैक्स लागू करण जी मंज़ूरी ॾिनी। इजलास खे ॿुधायो वियो त हीउ हाईवे शहीद बजराबाद, नौशरफ़ ऐं शेरपुर ज़िलनि खे पाण में मिलाए थी। 41 अरब रुपयनि जी लागत सां रोड खे डबल कयो पियो वञे। उन ई रोड ते रोज़ानो 22,000 खां वधीक गाॾियूं गुज़रनि थियूं। तजवीज़ कयल टूलिंग सिस्टम मां लॻभॻि 2.14 अरब रुपया सालियानी आमदनी थियण जो इम्कान आहे। काबीना सूबे जे खुराक जी ज़रूरतुनि खे पूरो करण जे लाइ ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ज़रिए 5 लख टन कणक दरामद करण जी बि मंज़ूरी ॾिनी। काबीना खे ॿुधायो वियो त सिंध में कणक जी कुल दस्तियाबी 4.84 ऐं सालियानी घुर्ज 6.53 मिलियन टन आहे। लॻभॻि 1.69 मिलियन टन खोट जो इम्कान आहे। गौर वीचार खां पोइ काबीना वफ़ाक़ी हुकूमत पारां कोआर्डिनेट कयल फ्रेमवर्क तहत TCP ज़रिए 5 लख टन कणक जी दरामद जी मंज़ूरी ॾिनी। काबीना एक्साइज़ खाते जे गाॾियुनि जी रजिस्ट्रेशन, टैक्स ऐं इंश्योरेंस निज़ाम में सुधारनि जूं तजवीज़ूं मंज़ूर करे वरितियूं। ऑफ बोर्ड ऐं तबाह थियल गाॾियुनि जी डी रजिस्ट्रेशन पॉलिसीअ जी मंज़ूरी। इस्तेमाल न थियण जोगियूं या सिस्टम मां ख़ारिज थियल गाॾियुनि जा मालिक 30 सेप्टेम्बर ताईं लिखित में पधिराई जमा कराइण जा पाबंद हूंदा। जुलाई 2010 खां टैक्स अदा न करण ऐं पधिराई जमा न कराइण वारनि गाॾियुनि खे ऑफ रोड तसवर कयो वेंदो। रहतूं अदा न करण सबबि 60 ॾींहनि बाद गाॾियुनि जी रजिस्ट्रेशन रद्द कई वेंदी। गाॾियुनि जी रजिस्ट्रेशन निज़ाम खे वधीक शफ़ाफ़ ऐं इसराइतो बनाइण जी बि मंज़ूरी। मोटर डीलर्स वटि रखण जो मुदो 12 महीननि खां वधीक न हूंदो। चीन पारां सिंध खे लेडी हेल्थ वर्करनि जे लाइ 2000 घर ठाहे ॾियण जो फ़ैसिलो। सिहत वारे वफ़ाक़ी वज़ारत पारां ट्रांसपोर्ट ऐं मरमती ख़र्च खणण जे सूरत में घरनि जो अंग वधाए 40-19 करण जी आछ। उन ॾिस में सिहत वारे वफ़ाक़ी वज़ारत चीन तरफ़ां बोर मुतासिरनि जी बहालीअ जे लाइ ॾिनल ग्रांट मां लेडी हेल्थ वर्करनि लाइ प्री फेब्रिकेटेड घरनि जी तामीर वारे मनसूबे जो जाइज़ो वरितो आहे। रिथा मूजिबि शुरूआती तौर 3000 घर त

अमीर कया वेंदा। जेकॾहिं वफ़ाक़ी वज़ारत ऐं सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट ऐं अॾावती ख़र्च बर्दाश्त कया त उन्हनि घरनि जो अघु वधी 6,000 ताईं पहुची सघे थो। सिंध सूबे खे 4,019 घर मिलण जो इम्कान आहे। दस्तावेज़ मूजिबि चीनी ग्रांट जे मजमूई रक़म 800 मिलियन RMB आहे, जंहिं मां 300 मिलियन 11,80 करोड़ रुपया RMB लेडी हेल्थ वर्करनि लाइ घरनि जे तामीर लाइ मुख़्तस कई वई आहे। चीनी वफ़द तजवीज़ ॾिनी आहे त हू प्री फेब्रिकेटेड घरनि में 2 कमरा हूंदा, जिन मां हिकु कमरो क्लिनिक या तिबी ख़िदमतुनि लाइ ऐं ॿियो रिहाइश लाइ मखसूस हूंदो। हर घर जी वेकर 3 मीटर, ड्रेग 8 मीटर ऐं ऊचाई 2.6 मीटर हूंदी। कुल तामीर थियल एराधी 24 चौरस मीटर हूंदी। घरनि में बिजली जे अंदरूनी वायरिंग, रोशनी, भित ते लॻल पखो, बरकी साकट, प्लम्बिंग, ज़रूरी फर्नीचर, सोलर पावर सिस्टम, वाटर पंप ऐं पाणी जी टांकी समेत बुनियादी सहूलियतूं फराहम कयूं वेंदियूं। उन्हनि घरनि जी उमिरि 20 साल ॿुधाई वई आहे। इजलास खे ॿुधायो वियो त 300 मिलियन RMB जे बजट मां 3,000 घर तामीर थींदा। पाकिस्तान मेडिकल ऐं डेंटल काउंसिल वज़ीर आज़म जे हिदायत ते मेडिकल ऐं डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट 2026 मुलतवी करे छॾी। पधराई में चयो वियो आहे त MDKET जी टेस्ट हाणे 16 अगस्त बदिरां 20 सेप्टेम्बर 2026 ते थींदी। तारीख़ तब्दील करण जो फ़ैसिलो इम्तिहान खे वधीक मुनज़िम, महफ़ूज़, शफ़ाफ़ ऐं उमेदवारनि जे लाइ आसान बणाइण जो मक़सद सां कयो वियो आहे। इम्तिहान जी तारीख़ खां पोइ ॿिया समूरा शर्त ऐं ज़ाब्ता बरक़रार रहंदा। लाड़काणे में एंटी करप्शन जी ख़ासि अदालत पारां PP सिंध जे सदर निसार करोड़ समेत ॿियनि ख़िलाफ़ मिल्कियत जे रिकॉर्ड में मुबैना फेरफार बाबति जांच जो हुकुम। 6 हफ़्तनि अंदरि जांच रिपोर्ट तलब। हुन सिलसिले में मिलियल ॼाण मूजिबि लाड़काणे जे एंटी करप्शन जी ख़ासि अदालत अॻूणे तालिक़े नाज़िम क़ुर्बान अली अब्बासी तरफ़ां दाख़िल दरख़्वास्त ते ॿुधणी कई। अदालत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर निसार करोड़ समेत ॿियनि ख़िलाफ़ मिल्कियतुनि जे सरकारी रिकॉर्ड में मुबैना फेरफार ऐं अख़्तियारनि जो नाजाइज़ इस्तेमालु बाबति इल्ज़ामनि ते शुरूआती जांच जो हुकुम जारी करे छॾियो। अदालत एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट रीजनल डायरेक्टर खे हिदायत कई आहे त 6 हफ़्तनि अंदरि जांच मुकमल करे रिपोर्ट पेश कई वञे। दरख़्वास्त गुज़ार क़ुर्बान अली अब्बासी मौक़िफ़ इख़्तियार कयो आहे त निसार खोड़ो जी हिदायत ते अॻूणे एडिशनल कमिश्नर, अॻूण असिस्टेंट कमिश्नर, अॻूणे मुख़्तियारकार ऐं ॿियनि लाॻापियल आफ़ीसरनि मुबैना तौरु मिल्कियत जे सरकारी रिकॉर्ड में फेरफार करे गैर क़ानूनी क़दम खयां। दरख़्वास्त में इस्तदा कई वई आहे त सिंध हाई कोर्ट पारां रिकॉर्ड में मुबैना फेरफार रोकण बाबति जारी कयल हुकुमनि ते अमल दरामद खे यकीनी बणायो वञे ऐं एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट मुबैना तौरु रिकॉर्ड में फेरफार कंदड़ ज़िमेवारनि माण्हुनि ख़िलाफ़ क़ानून मूजिबि कार्रवाई करे। अदालत पंहिंजे हुकुम में ई क़रार ॾिनो आहे त इल्ज़ाम जी हक़ीक़त मालूम करण जे लाइ मुकमल जांच ज़रूरी आहे, जंहिंखां पोइ वधीक कार्रवाई बाबति फ़ैसिलो कयो वेंदो। तालीम खाते सिंध सरकारी स्कूलनि जो नओं टाइम टेबल मुक़ररु करे छॾियो आहे। जारी कयल सर्कुलर मूजिबि 6 अगस्त खां 31 अगस्त ताईं प्राइमरी स्कूल सूमर खां ख़मीस ताईं सुबुह 8 खां 2:30 ताईं खुलियल रहंदा, जॾहिं त सिंगल शिफ्ट प्राइमरी स्कूल जुमे ॾींहुं सुबुह जो 8 खां 1 वॻे ताईं खुलियल रहंदा, जॾहिं त 1 नवंबर खां 31 मार्च ताईं सिंगल शिफ्ट प्राइमरी स्कूल सुबुह 8:30 खां मंझंदि 3 वॻे ताईं हलंदा। अहिड़ी तरह प्राइमरी डबल शिफ्ट स्कूलनि जो बि शेड्यूल जारी कयो वियो आहे। सर्कुलर मूजिबि त डबल शिफ्ट एलिमेंट्री, सेकेंडरी ऐं हायर सेकेंडरी स्कूलनि जी पहिरीं शिफ्ट 6 अगस्त खां 31 अगस्त ताईं सुबुह 7:30 खां मंझंदि 1:30 वॻे ताईं हलाई वेंदी, जॾहिं त 1 नवंबर खां 31 मार्च ताईं डबल शिफ्ट एलिमेंट्री ऐं हायर सेकेंडरी सुबुह जी शिफ्ट 8 खां मंझंदि 1:30 ताईं हूंदी। चूंडकोमी नौजवान आशिक चांडियो सां मुबैना ज़्यादती, तशदुद ऐं वीडियो वायरल करण वारे मामले बाद पीर साहब पागारे वाक़े जो नोटिस वठंदे इल्ज़ाम हेठि आयल नियाज़ आरादी, इम्तियाज़ आरादी, अली नवाज़ आरादी, मीर हसन आरादी ऐं ग़ुलाम मुर्तज़ा आरादीअ जो हथु बंदि करे छॾियो। पुलिस नामज़द जवाबदार जी गिरफ़्तारी जे लाइ वॾी नफ़रीअ सां छापा हणी मुख़्तलिफ़ हंधनि ते कार्रवायूं कयूं, जॾहिं त जवाबदार जे भाउ अली गुलाब आराई, हाई हाजन आरादीअ समेत 5 ते सरकार पारां ड्यूटी अटका पुलिस मथां हमले जो केस दाख़िल कयो वियो आहे। होॾां फिरियादी अज़ीम चांडियो इंसाफ़ जो मुतालबो कंदे चयो आहे त वाक़े में मुलविस जवाबदारनि ख़िलाफ़ सख़्त कानूनी कार्रवाई कई वञे। ॿिए तरफ़ नामज़द जवाबदार नियाज़ आरादी क़ुरान पाक हथ में खणी पंहिंजी बेगुनाही जो इज़हार कंदे सभई इल्ज़ाम रद्द करे छॾिया आहिनि। SHO सोरा यासिर खोसो राब्ते ते ॿुधायो त जवाबदार ख़िलाफ़ कार्रवाई करे रहिया आहियूं, रियायत न थींदी।

पेशा है स्पेशल रिपोर्ट। सिंध रुगो पाकिस्तान के नक्शे से एक सूबो न पर पांजे हजारे सालन की तारीख, सकाफत, बोली, जोग्राफी ए तहजीबी सुणप रखड़ एक तारीखी वहदत है। पाकिस्तान के क्याम की तारीख में सिंध जो किरदार भी बुनियादी अहमियत रखे तो। 1940 के करारदाद का वठी पाकिस्तान के क्याम तीन सिंध के सियासी क्यादत अवाम पांजे मखसूस तारीखी हैसियत से पाकिस्तान के तहरीक में हिस्सों रहा। अज जद मुल्क में नवन सूबन के क्याम जो बहस बीहर जोर वठी रो है तदें वो सवाल सिर्फ इंतजामी विरासत तीन महदूद न तो रहे। सिंध की अवाम लाए वो सवाल पांजी तारीखी वहदत वसीलन जोग्राफी मुस्तकबिल से गंढियल है। तें करे अड़ी कें भी तजवीज से जज्बात बदर तारीखी हकीकतुन आइनी उसूलन अवामी रजामंदी के बुनियाद से गौर थे घुर्जे। बदकिस्मती से सिंध में एक अरसे का वो एहसास वधी रो है तो सिंध के वसीलन जमीनुन पानी सामुंडी पट्टी ए खास तौर कराची बाबत फैसला सिंध की अवाम के ख्वाहिश के नजरअंदाज कर वन था। जैसे कें सूबे की अवाम में मुसलसल उ एहसास पैदा थे तो संदन आवाज नो बुध वे तो उ सूरत हाल कें भी वफाक लाए फायदेमंद नी थी सके। कराची इन बहस जो सब का अहम नुक्तो है। कराची सिर्फ एक मुआशी शहर न पर सिंध के तारीखी जोग्राफियाई वजूद जो हिस्सो है। सागे वक्त कराची मुख्तलिफ कौम बोलियन सकाफतुन से ताल्लुक रखड़ लखे मानून जो शहर पिण है। सिंधी उर्दू गलड़ बलोच पख्तून पंजाबी बियन बिरादरीन कराची की तमीर और तरक्की मीपा जो किरदार अदा किया है। तं कराची के कें एक लासानी ग्रोह के मिल्कियत करार दियण तारीखी समाजी हकीकतुन के महदूद करण बराबर होंद। वो भी हकीकत है तो सिंध के बिन वन शहर में मुख्तलिफ बिरादरी जहा मू गजी रहा। वक्त से गड शहरी आबादी वधी है, नव आबादियों वजूद में आयु हैं, मुख्तलिफ बोलियों गलड़ मू एक बे में जजब पिण थे। दुनिया के बिन शहर वागुर कराची में भी शहरी आबादी की तब्दीली एक फितरी अमल है। उन तब्दीली के लासानी खौफ या सियासी तकरार के सबब बनाने बदरा हकीकत पसंद अंदाज से समझने की जरूरत है। सागे वक्त सिंध के सियासी समाजी क्यादत की जिम्मेवारी भी तमाम वही है। रुगो एहतजाज या बयानबाजी काफ़ी ना है। सिंध के मुख्तलिफ सियासी समाजी दानश्वर कॉम्प्रेस धुरन के इख्तलाफन का मथाउ थी एक वाजे जमहूरी पुरमन हिकमत अमली जोड़ घुर्जे। बे तरफ उर्दू गलड़ सिंधियन समेत कराची के समूरन बिरादरन के भी वो समझण घुर्जे तो सिंध की वहदत कें एक बिरादरी के खिलाफ मनसूबो ना है। सिंधी तारीख मुस्तकबिल में हर उन शहरी जो हिस्सो है जो इन धरती के पांजो घर समझे तो। अज जरूरत उन गाल है तो सिंध बाबत हर फैसले में सिंध की अवाम की राय आइनी हकन तारीखी हैसियतुन के नजर में रखियो वे। नवन सूबन जो सवाल हुए या कराची जो मुस्तकबिल अड़ा फैसला कें बंद कमरे में न पर अवामी रजामंदी आइनी अमल जमहूरी उसूलन तहत थे घुर्जन।

0: हुयो हिन वक्त जो सिंध राउंड अप बे आचर जे सिंध राउंड अप तई गुलाब खान भेण के दिना इजाजत अल्लाह निगहबान।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद आई मां अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
2: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
3: It's 9:15 PM. This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.

0: कालम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 हैं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00-003
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
3: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
4: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372
5: अस्सलाम वालेकुम अदा
6: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
5: मुजे दुकान जी बे डरंदी
6: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
6: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
7: 0301-399-2836
3: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003
1: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का

0: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते अवांजी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाने पहिजी स्किन के दियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवांजी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GFM 94

सिंध राउंड अप में अज अवां बुझी सकंदा चीन पारां सिंध के लेडी हेल्थ वर्करन जे लाए 2000 घर ठाहे ॾियण जो फैसलो। सिंध जो 114 साल पुराणो रेवेन्यू कानून तब्दील, मेहरान हाईवे ते टूल टैक्स लागू। निसार खेड़ो ऐं रेवेन्यू ऑफिसरन मथां मिल्कियत जे सरकारी रिकॉर्ड में फेरफार जा इल्ज़ाम, जांच जो हुकुम। तालीम खाते पारां सरकारी स्कूलन जो नओं टाइम टेबल मुक़रर, सुबुह 8 खां 2:30 बजे मंझंदि ताईं स्कूल खुलियल रहंदा। पुरन जे रूहानी पेशवा पीर साहब पागार चूंड कौमी नौजवान सां मुबैना ज़्यादती कंदड़ पंजनि जवाबदारन जा हथ बंदि करे छॾिया। स्पेशल रिपोर्ट में अव्हां ॿुधी सघंदा, सिंध कराची ऐं नवनि सूबनि जो सवाल। सिंध जो 114 साल पुराणो रेवेन्यू कानून तब्दील, एराज़ीअ जो तईन मार्केट अघनि सां लाज़मी करार। 5 लख टन परॾेही कणिक ख़रीदारीअ जी मंज़ूरी, मेहरान हाईवे ते टूल टैक्स लागू। उन ॾस में वज़ीर आला सिंध सैद मुराद अली शाह जे सदारत में थियल काबीना इजलास में सिंध गवर्नमेंट लैंड्स मैनेजमेंट बिल 2026 ते गौर वीचार कयो, जंहिंजो मक़सदु सदी पुराणो कॉलोनाइज़ेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स एक्ट 1912 खे सूबे में सरकारी ज़मीन जे इंतज़ाम, अलाइनमेंट ऐं इस्तेमाल जे लाइ जदीद ऐं शफ़ाफ़ क़ानूनी फ्रेमवर्क सां तब्दील करणु आहे। तजवीज़ कयल क़ानून साज़ी मार्केट ते ॿधल वैल्यूएशन, शफ़ाफ़ अवामी नीलामी जो तरीक़ो, अलाटमेंट लाइ वाज़े क़ाबिलियत जा मयार, सख़्त इंतज़ामी शिकूं ऐं शिकायतुनि जे अज़ाले जो हिकु मौसर निज़ाम मुतारिफ़ कराए ज़मीनुनि जे गवर्नेंस में वॾे अरसे खां ईंदड़ मसलनि खे हल करणु चाहे थी। नओं फ्रेमवर्क ज़रई ज़मीन सां गॾु सनती, रिहाइशी, वापारी, अवामी मक़सदनि ऐं एम्यूनिटी मनसूबनि जी ज़रूरतुनि खे बि पूरो कंदो। काबीना नवाब शाह राणीपुर मेहरान हाईवे जे 35 किलोमीटर रोड ते टूल टैक्स लागू करण जी मंज़ूरी ॾिनी। इजलास खे ॿुधायो वियो त हीउ हाईवे शहीद बजराबाद, नौशरफ़िरोज़ ऐं खेरपुर ज़िलनि खे पाण में मिलाए थी। 41 अरब रुपयनि जी लागत सां रोड खे डबल कयो पियो वञे। उन ई रोड ते रोज़ानो 22,000 खां वधीक गाॾियूं गुज़रनि थियूं। तजवीज़ कयल टूलिंग सिस्टम मां लॻभॻि 2.14 अरब रुपया सालियानी आमदनी थियण जो इम्कान आहे। काबीना सूबे जे खुराक जी ज़रूरतुनि खे पूरो करण जे लाइ ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ज़रिए 5 लख टन कणक दरामद करण जी बि मंज़ूरी ॾिनी। काबीना खे ॿुधायो वियो त सिंध में कणक जी कुल दस्तियाबी 4.84 ऐं सालियानी घुर्ज 6.53 मिलियन टन आहे। लॻभॻि 1.69 मिलियन टन खोट जो इम्कान आहे। गौर वीचार खां पोइ काबीना वफ़ाक़ी हुकूमत पारां कोआर्डिनेट कयल फ्रेमवर्क तहत TCP ज़रिए 5 लख टन कणक जी दरामद जी मंज़ूरी ॾिनी। काबीना एक्साइज़ खाते जे गाॾियुनि जी रजिस्ट्रेशन, टैक्स ऐं इंश्योरेंस निज़ाम में सुधारनि जूं तजवीज़ूं मंज़ूर करे वरितियूं। ऑफ बोर्ड ऐं तबाह थियल गाॾियुनि जी डी रजिस्ट्रेशन पॉलिसी जी मंज़ूरी, इस्तेमालु न थियण जोॻियो या सिस्टम मां ख़ारिज थियल गाॾियुनि जा मालिक 30 सेप्टेम्बर ताईं लिखित में पधिराई जमा कराइण जा पाबंद हूंदा। जुलाई 2010 खां टैक्स अदा न करण ऐं पधिराई जमा न कराइण वारनि गाॾियुनि खे ऑफ रोड तसवर कयो वेंदो। रहतूं अदा न करण सबबि 60 ॾींहनि बाद गाॾियुनि जी रजिस्ट्रेशन रद्द कई वेंदी। गाॾियुनि जी रजिस्ट्रेशन निज़ाम खे वधीक शफ़ाफ़ ऐं इसराइतो बनाइण जी बि मंज़ूरी। मोटर डीलर्स वटि रखण जो मुदो 12 महीननि खां वधीक न हूंदो। चीन पारां सिंध खे लेडी हेल्थ वर्करनि जे लाइ 2000 घर ठाहे ॾियण जो फ़ैसिलो। सिहत वारे वफ़ाक़ी वज़ारत पारां ट्रांसपोर्ट ऐं मरमती ख़र्च खणण जे सूरत में घरनि जो अंग वधाए 40-19 करण जी आछ। उन ॾस में सिहत वारे वफ़ाक़ी वज़ारत चीन तरफ़ां बोर मुतासिरनि जी बहालीअ जे लाइ ॾिनल ग्रांट मां लेडी हेल्थ वर्करनि लाइ प्री फेब्रिकेटेड घरनि जी तामीर वारे मनसूबे जो जाइज़ो वरितो आहे। रिथा मूजिबि शुरूआती तौरु 3000 घर तामीर कया वेंदा। जेकॾहिं वफ़ाक़ी वज़ारत ऐं सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट ऐं अदावती ख़र्च बर्दाश्त कया त उन्हनि घरनि जो अंगु वधी 6000 ताईं पहुची सघे थो। सिंध सूबे खे 4019 घर मिलण जो इम्कान आहे। दस्तावेज़ मूजिबि चीनी ग्रांट जे मजमूई रक़म 800 मिलियन RMB आहे, जंहिंमां 300 मिलियन 11 अरब 80 करोड़ रुपया RMB लेडी हेल्थ वर्करनि लाइ घरनि जे तामीर लाइ मुख़्तस कई वई आहे। चीनी वफ़द तजवीज़ ॾिनी आहे त हू प्री फेब्रिकेटेड घरनि में 2 कमरा हूंदा, जिन मां 1 कमरो क्लीनिक या तिबी ख़िदमतुनि लाइ ऐं ॿियो रिहाइश लाइ मखसूस हूंदो। हर घर जी वेकर 3 मीटर, ड्रेग 8 मीटर ऐं ऊचाई 2.6 मीटर हूंदी।
कुल तामीर थियल एराधी 24 चौरस मीटर हूंदी। घरनि में बिजली जे अंदरूनी वायरिंग, रोशनी, भित ते लॻल पखो, बरकी साकट, प्लम्बिंग, ज़रूरी फर्नीचर, सोलर पावर सिस्टम, वाटर पंप ऐं पाणी जी टांकी समेत बुनियादी सहूलियतूं फराहम कयूं वेंदियूं। उन्हनि घरनि जी उमिरि 20 साल ॿुधाई वई आहे। इजलास खे ॿुधायो वियो त 300 मिलियन RMB जे बजट मां 3000 घर तामीर थींदा। पाकिस्तान मेडिकल ऐं डेंटल काउंसिल वज़ीर आज़म जे हिदायत ते मेडिकल ऐं डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट 2026 मुलतवी करे छॾी। पधराई में चयो वियो आहे त MDKAT जी टेस्ट हाणे 16 अगस्त बदिरां 20 सेप्टेम्बर 2026 ते थींदी। तारीख़ तब्दील करण जो फ़ैसिलो इम्तिहान खे वधीक मुनज़िम, महफ़ूज़, शफ़ाफ़ ऐं उमेदवारनि जे लाइ आसान बणाइण जो मक़सद सां कयो वियो आहे। इम्तिहान जी तारीख़ खां पोइ ॿिया समूरा शर्त ऐं ज़ाब्ता बरक़रार रहंदा। लाड़काणे में एंटी करप्शन जी ख़ासि अदालत पारां PP सिंध जे सदर निसार करोड़ समेत ॿियनि ख़िलाफ़ मिल्कियत जे रिकॉर्ड में मुबैना फेरफार बाबति जांच जो हुकुम। 6 हफ़्तनि अंदरि जांच रिपोर्ट तलब। हुन सिलसिले में मिलियल ॼाण मूजिबि लाड़काणे जे एंटी करप्शन जी ख़ासि अदालत अॻूणे तालिक़े नाज़िम क़ुर्बान अली अब्बासी तरफ़ां दाख़िल दरख़्वास्त ते ॿुधणी कई। अदालत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर निसार करोड़ समेत ॿियनि ख़िलाफ़ मिल्कियतुनि जे सरकारी रिकॉर्ड में मुबैना फेरफार ऐं अख़्तियारनि जो नाजाइज़ इस्तेमालु बाबति इल्ज़ामनि ते शुरूआती जांच जो हुकुम जारी करे छॾियो। अदालत एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट रीजनल डायरेक्टर खे हिदायत कई आहे त 6 हफ़्तनि अंदरि जांच मुकमल करे रिपोर्ट पेश कई वञे। दरख़्वास्त गुज़ार क़ुर्बान अली अब्बासी मौक़िफ़ इख़्तियार कयो आहे त निसार खोड़ो जी हिदायत ते अॻूणे एडिशनल कमिश्नर, अॻूणे असिस्टेंट कमिश्नर, अॻूणे मुख़्तियारकार ऐं ॿियनि लाॻापियल आफ़ीसरनि मुबैना तौरु मिल्कियत जे सरकारी रिकॉर्ड में फेरफार करे गैर क़ानूनी क़दम खयां। दरख़्वास्त में इस्तदा कई वई आहे त सिंध हाई कोर्ट पारां रिकॉर्ड में मुबैना फेरफार रोकण बाबति जारी कयल हुकमनि ते अमल दरामद खे यकीनी बणायो वञे ऐं एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट मुबैना तौरु रिकॉर्ड में फेरफार कंदड़ ज़िमेवारनि माण्हुनि ख़िलाफ़ क़ानून मूजिबि कार्रवाई करे। अदालत पंहिंजे हुकुम में ई क़रार ॾिनो आहे त इल्ज़ाम जी हक़ीक़त मालूम करण जे लाइ मुकमल जांच ज़रूरी आहे, जंहिंखां पोइ वधीक कार्रवाई बाबति फ़ैसिलो कयो वेंदो। तालीम खाते सिंध सरकारी स्कूलनि जो नओं टाइम टेबल मुक़ररु करे छॾियो आहे। जारी कयल सर्कुलर मूजिबि 6 अगस्त खां 31 अगस्त ताईं प्राइमरी स्कूल सूमर खां ख़मीस ताईं सुबुह 8 खां 2:30 ताईं खुलियल रहंदा, जॾहिं त सिंगल शिफ्ट प्राइमरी स्कूल जुमे ॾींहुं सुबुह जो 8 खां 1 वॻे ताईं खुलियल रहंदा, जॾहिं त 1 नवंबर खां 31 मार्च ताईं सिंगल शिफ्ट प्राइमरी स्कूल सुबुह 8:30 खां मंझंदि 3 वॻे ताईं हलंदा। अहिड़ी तरह प्राइमरी डबल शिफ्ट स्कूलनि जो बि शेड्यूल जारी कयो वियो आहे। सर्कुलर मूजिबि त डबल शिफ्ट एलिमेंट्री, सेकेंडरी ऐं हायर सेकेंडरी स्कूलनि जी पहिरीं शिफ्ट 6 अगस्त खां 31 अगस्त ताईं सुबुह 7:30 खां मंझंदि 1:30 वॻे ताईं हलाई वेंदी, जॾहिं त 1 नवंबर खां 31 मार्च ताईं डबल शिफ्ट एलिमेंट्री ऐं हायर सेकेंडरी सुबुह जी शिफ्ट 8 खां मंझंदि 1:30 ताईं हूंदी। चूंड क़ौमी नौजवान आशिक चांडियो सां मुबैना ज़्यादती, तशदुद ऐं वीडियो वायरल करण वारे मामले बाद पीर साहब पागारे वाक़े जो नोटिस वठंदे इल्ज़ाम हेठि आयल नियाज़ आरादी, इम्तियाज़ आरादी, अली नवाज़ आरादी, मीर हसन आरादी ऐं ग़ुलाम मुर्तज़ा आरादीअ जो हथ बंदि करे छॾियो। पुलिस नामज़द जवाबदार जी गिरफ़्तारी जे लाइ वॾी नफ़रीअ सां छापा हणी मुख़्तलिफ़ हंधनि ते कार्रवायूं कयूं, जॾहिं त जवाबदार जे भाउ अली गुलाब आराई, हाई हाजन आरादीअ समेत 5 ते सरकार पारां ड्यूटी अटका पुलिस मथां हमले जो केस दाख़िल कयो वियो आहे। होॾां फिरियादी अज़ीम चांडियो इंसाफ़ जो मुतालबो कंदे चयो आहे त वाक़े में मुलविस जवाबदारनि ख़िलाफ़ सख़्त कानूनी कार्रवाई कई वञे। ॿिए तरफ़ नामज़द जवाबदार नियाज़ आरादी क़ुरान पाक हथ में खणी पंहिंजी बेगुनाही जो इज़हार कंदे सभई इल्ज़ाम रद्द करे छॾिया आहिनि। SHO सोरा यासिर खोसो राब्ते ते ॿुधायो त जवाबदार ख़िलाफ़ कार्रवाई करे रहिया आहियूं, रियायत न थींदी।

पेशा है स्पेशल रिपोर्ट। सिंधु गो पाकिस्तान के नक्शे से एक सूबो न पर पांजे हजारे सालन जी तारीख सकाफत बोली जोग्राफी ए तहजीबी सुणप रखड़ एक तारीखी वहदत है। पाकिस्तान के क्याम की तारीख में सिंध जो किरदार भी बुनियादी अहमियत रखे तो। 1940 के करारदाद का वी पाकिस्तान के क्याम तिंध की सियासी क्यादत अवाम पांजे मखसूस तारीखी हैसियत से पाकिस्तान के तहरीक में हिस्सों रहा। अज जद मुल्क में नवन सूबन के क्याम जो बहस बीहर जोर वी रो है तदें वो सवाल सिर्फ इंतजामी विरासत तहदूद न तो रहे सिंध की अवाम लाए वो सवाल पांजी तारीखी वहदत वसीलन जोग्राफी मुस्तकबिल से गंढियल है। तें करे अड़ी कें भी तजवीज से जज्बात बदरा तारीखी हकीकतुन आइनी उसूलन अवामी रजामंदी के बुनियाद से गौर थे घुर्जे। बदकिस्मती से सिंध में एक अरसे का वो एहसास वधी रो है तो सिंध के वसीलन जमीनुन पानी सामुंडी पट्टी ए खास तौर कराची बाबत फैसला सिंध की अवाम की ख्वाहिश के नजरअंदाज कर क्या वन था। जैसे कें सूबे की अवाम में मुसलसल उ एहसास पैदा थे तो संदन आवाज न तो बुध वे तो सूरत हाल कें भी वफाक लाए फायदेमंद नी सके। कराची इन बहस जो सब का अहम नुक्तो है। कराची सिर्फ एक मुआशी शहर न पर सिंध के तारीखी ए जोग्राफियाई वजूद जो हिस्सों है। सागे वक्त कराची मुख्तलिफ कौमन बोलियन सकाफतुन से ताल्लुक रखड़ लखे मानून जो शहर पिण है। सिंधी उर्दू गलड़ बलोच पख्तून पंजाबी बेन बिरादरीन कराची की तमीर और तरक्की मीपा जो किरदार अदा किया है। तें करे कराची के कें एक लासानी गुरोह के मिल्कियत करार दियण तारीखी ए समाजी हकीकतुन के महदूद करण बराबर होंद। वो भी हकीकत है तो सिंध के बिन वन शहर में मुख्तलिफ़ बिरादरी जहा मू गजी रहा वक्त से गड शहरी आबादी वधी है। नव आबादी वजूद में आयु हैं मुख्तलिफ़ बोलियों ऐलड़ मू एक बे में जज़ब पिण थिया। दुनिया के बिन शहर वागुर कराची में भी शहरी आबादी की तब्दीली एक फितरी अमल है। उन तब्दीली के लासानी खौफ या सियासी तकरार के सबब बनाने बदरा हकीकत पसंद अंदाज से समझण की जरूरत है। सागे वक्त सिंध के सियासी समाजी क्यादत की जिम्मेवारी भी तमाम वही है। रुगो एहतजाज या बयानबाजी काफ़ी ना है। सिंध के मुख्तलिफ़ सियासी समाजी दानश्वर कॉम्प्रेस धुरन के इख्तलाफन का मथाउं थी एक वाजे जमूरी पुरमन हिकमत अमली जोड़ घुर्जे। बे तरफ उर्दू गालड़ सिंधियन समेत कराची के समूरन बिरादरन के भी वो समझण घुर्जे तो सिंध की वहदत कें एक बिरादरी के खिलाफ मनसूबो ना है। सिंधी तारीख ए मुस्तकबिल में हर उन शहरी जो हिस्सों है जो इन धरती के पांजो घर समझे तो। अज जरूरत उन गाल है तो सिंध बाबत हर फैसले में सिंध की अवाम की राय आइनी हकन तारीखी हैसियतुन के नजर में रखो वे। नवन सूबन जो सवाल हुए या कराची जो मुस्तकबिल अड़ा फैसला कें बंद कमरे में न पर अवामी रजामंदी आइनी अमल जमूरी उसूलन तहत थन घुर्जन।

0: हुयो हिन वक़्त ताईं जो सिंध राउंडअप। ॿिए आचर जे सिंध राउंडअप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94।